श्रोताओं, इसी के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना अभी संपन्न होता है। अलमास रजा को दीजिए अनुमति। नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो 102.3।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 25वीं तिथि, तदनुसार 15 मई सन 2026 सुबह के 5:53 और 13 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

नेहा बेनीवाल के साथ। इसके बाद 7:05 पर कार्यक्रम होगा गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। सोनू भट्ट ये कार्यक्रम लेकर आएंगे और 8:00 आप सुनेंगे दिल के तराने, गाने नए पुराने। ये कार्यक्रम होगा 9:00 और 8:00 आप सुनेंगे गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर।

श्रोता आनंद ले सकते हैं वेस्टर्न म्यूजिक का 10:05 पर और पेशकश होगी आकांक्षा मोहन की। 11:05 पर आप सुनेंगे बॉलीवुड ट्रेल्स रंजन अर्नेजा के साथ और इसके बाद श्रोता सुनेंगे 10:00 समाचार होंगे और माफ कीजिएगा 1:00 समाचार होंगे और 1:05 पर आप सुनेंगे बिंदास बोल रंजन अर्नेजा के साथ।

हमारे श्रोता आनंद लेंगे आशियाना कार्यक्रम का 2 बजे और कार्यक्रम लेकर आएंगे शालिनी सिंह। 3 बजे होगा रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम, शैली भाषांजलि यह कार्यक्रम पेश करेंगे।

अल्फा जैन आप सुनेंगे 4:05 पर, और 5 बजे कार्यक्रम आप सुनेंगे सिटी लाइट। इसके बाद 6:05 पर मैसेज मसाला मिक्स, और 7:05 पर होगा

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि। सरकार ने अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत शुल्क मुक्त सोने के आयात की सीमा 100 किलोग्राम तय की। प्रवर्तन निदेशालय ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप में कोलकाता पुलिस के उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया। और वुशु में अपर्णा दहिया ने मकाऊ में सांडा विश्व कप में महिला वर्ग के 52 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों पक्षों के बीच ऊर्जा सुरक्षा, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होने की उम्मीद है।
1: इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन एलएनजी की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। यूएई के सॉवरेन वेल्थ फंड्स भारत के सोलर इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्टिवली निवेश कर रहे हैं। साथ ही भारत का शांति एक्ट न्यूक्लियर सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोल रहा है। क्रूड ऑयल से एलएनजी तक, परंपरागत ऊर्जा से स्वच्छ ऊर्जा तक, इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए

0: एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। इससे पहले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। उन्होंने कहा कि हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व पर बल दिया है।
1: हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब दुनिया तेजी से बदल रही है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव, संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितता और व्यापार, तकनीक तथा जलवायु से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक स्थिति को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे समय में ब्रिक्स से सकारात्मक और स्थिर भूमिका निभाने की उम्मीद बढ़ी है। आज कई देश ऊर्जा, भोजन, उर्वरक, स्वास्थ्य सुरक्षा और वित्तीय सहायता जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ब्रिक्स उन्हें इन समस्याओं से बेहतर तरीके से निपटने में सहायता कर सकता है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्ती में कई एरोस्पेस और रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर श्री सिंह उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान कार्यक्रम सुविधा की भी आधारशिला रखेंगे। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 97.77 रुपए प्रति लीटर जबकि डीजल की कीमत 90.67 रुपए प्रति लीटर हो गई है। वहीं मुंबई में पेट्रोल 106.68 रुपए और डीजल 93.14 रुपए प्रति लीटर की दर से मिलेगा। कोलकाता में पेट्रोल 108.74 रुपए और डीजल 95.13 रुपए प्रति लीटर पर उपलब्ध होगा। चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 103.77 रुपए और डीजल का मूल्य 95.35 रुपए प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सरकार ने अब अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। पहले इस योजना के तहत सोने के आयात की कोई सीमा नहीं थी। एक रिपोर्ट।
2: ये योजना आभूषण निर्यातकों को शून्य शुल्क पर कच्चे माल का आयात करने की अनुमति देती है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक सार्वजनिक सूचना में कहा है कि इस योजना के अंतर्गत निर्यातक एक बार में अधिकतम 100 किलोग्राम सोना ही बिना किसी शुल्क के मंगा सकते हैं। महानिदेशालय ने पहली बार आवेदन करने वालों के लिए विनिर्माण संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है ताकि उसकी परिचालन स्थिति और क्षमता का पता लगाया जा सके। इसमें यह भी कहा गया है कि दोबारा बिना शुल्क के आयात के लिए कंपनी को अपने पिछले टारगेट का कम से कम 50% निर्यात पूरा करना होगा। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: अभियान। निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप और धनशोधन मामले में कोलकाता पुलिस के उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया है। कोलकाता के सीजीओ कॉम्प्लेक्स में कल शांतनु से 10 घंटे से अधिक की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। शांतनु सिन्हा को आज अदालत में पेश किया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय ने कालीघाट पुलिस स्टेशन के पूर्व प्रभारी शांतनु को सोना पप्पू उर्फ बिस्वजीत पुद्दार द्वारा चलाए जा रहे कथित आपराधिक गिरोह से जुड़े धनशोधन मामले में कई बार पूछताछ के लिए तलब किया था। सूत्रों के अनुसार ईडी को शांतनु बिस्वास से जुड़े कुछ संदिग्ध वित्तीय लेनदेन मिले हैं, जिनमें सोना पप्पू और उनके करीबी सहयोगी भी शामिल हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अनिल धीरूभाई अंबानी एडीएस समूह की कंपनियों में से एक रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड के विरुद्ध दर्ज मामले में मुंबई, गुरुग्राम और बेंगलुरु स्थित 7 परिसरों पर तलाशी ली है। ये तलाशी कंपनी के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी और निदेशकों के आवासों पर की गई है, जो वर्ष 2015 से 2017 के दौरान कंपनी में कार्यरत थे। सीबीआई ने बताया कि पिछले कुछ महीनों में अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस समूह के विरुद्ध विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और एलआईसी द्वारा हजारों करोड़ रुपए के कथित धोखाधड़ी के 7 मामले दर्ज किए गए हैं। आगामी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल शाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें नीट परीक्षा को सुचारू और प्रभावी ढंग से संचालित करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। केरलम में सरकार गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं। सोमवार को नए यूडीएफ मंत्रालय का शपथ ग्रहण समारोह होगा। इस बीच नए मंत्रालय के सदस्यों को लेकर चर्चा जारी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: वीडी सतीशन सोमवार को केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। यूडीएफ सूत्रों ने तिरुवनंतपुरम में बताया कि मुख्यमंत्री के साथ पूरी मंत्री परिषद भी शपथ लेगी। वहीं नए मंत्रियों और उनके विभागों को लेकर यूडीएफ के घटक दलों के बीच गहन चर्चा जारी है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला 4 मई को चुनाव परिणाम आने के बाद तिरुवनंतपुरम और नई दिल्ली में 10 दिन तक चली लगातार बैठकों और विचार विमर्श के बाद लिया गया। कांग्रेस और यूडीएफ के अन्य सहयोगी दल कल तक नई मंत्री परिषद को अंतिम रूप देने की कोशिश में जुटे हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मिथि एस पुल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
5: केरलम के शबरीमला मंदिर में कल शाम से मासिक पूजा एडवम शुरू हो गई है। मंदिर में दर्शन सुबह 5 बजे से किए जा सकते हैं। श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन बुकिंग सुविधा उपलब्ध है। उधमपुर जिले के शिव पार्वती मंदिर में आयोजित होने वाला ऐतिहासिक 3 दिवसीय वार्षिक मोंगरी मेला आज से शुरू हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसे शिव पार्वती मेले के नाम से भी जाना जाता है।
7: मेले में मोंगरी, पंचैरी, उधमपुर और जम्मू कश्मीर के अन्य क्षेत्रों तथा बाहर से भी भारी संख्या में लोग सरदब्बड़ आते हैं। वे यहाँ कुदरती गुफाओं में विराजमान भगवान शिव, देवी पार्वती और अन्य देवी देवताओं को नमन करते हैं। इन गुफाओं में प्राकृतिक रूप से बना 9.5 फीट का शिवलिंग है। युवा सेवा और खेल विभाग के सहयोग से कबड्डी, रस्साकशी, पत्थर उठाना और अन्य मनोरंजक गतिविधियों का भी आयोजन किया जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए जम्मू से मैं एन गुलशन रैन।
5: महाराष्ट्र के सतारा में आज प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थियों और महाआवास अभियान के राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया जाएगा। ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान लाभार्थियों के लिए निर्मित 5 लाख घरों का आवंटन किया जाएगा। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह के हिस्से के रूप में आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित आकाशवाणी केंद्र द्वारा एक वॉकथन का आयोजन किया गया। ये आयोजन आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्षों के सफर को यादगार बनाने के लिए किया जा रहा है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के साथ आकाशवाणी की स्थापना 8 जून 1936 में हुई थी। केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सिक्किम के 3 दिन के दौरे पर कल रात नामची जिला पहुंचे। आज वे प्रस्तावित नामची पर्यटन सर्किट पीएम डिवाइन के तहत भालेंडुगा में स्काई वॉक परियोजना और गंगटोक के आर्किडियम जैसी कई पर्यटन स्थलों और विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने केरलम में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। राज्य के तटवर्ती इलाकों में आज 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। खेलों में भारत की वुशु खिलाड़ी अपर्णा दहिया ने कल मकाऊ में आयोजित 11वें सांडा विश्व कप में महिलाओं के 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अपर्णा ने फाइनल में मौजूदा विश्व चैंपियन वियतनाम की थी फुआंग गांगू को हराया। प्रतिस्पर्धी वुशु को ताउलू और सांडा में 2 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे से चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है वैष्णवी।
8: फरत चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सवाल उठाए जाने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला लिखता है, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति समिति में मंत्री क्यों, तटस्थ हो तीसरा सदस्य। जनसत्ता के शब्द हैं ये बहुमत की तानाशाही, चयन समिति में निष्पक्ष व्यक्ति क्यों नहीं। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम घोषित किया। अब दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब में भी एसआईआर, दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है। दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के लिए कई जरूरी कदम उठाए। सरकारी दफ्तरों का समय बदला, 2 दिन घर से काम, हिन्दुस्तान सहित सभी अखबारों की खबर है। नव भारत टाइम्स ने सीयूईटी यूजी में सुधार लाने पर लेख प्रकाशित किया है। अपने संपादकीय पन्ने पर पत्र लिखता है, एग्जाम पैटर्न में लगातार बदलाव और दूर सेंटर होने की वजह से परेशानी में स्टूडेंट्स, एनटीए का बोझ हट बांटा जाए। वहीं राजस्थान पत्रिका ने आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस पर एक शोध प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, समय बदला, दूरियां बढ़ी लेकिन परिवार अब भी सबसे मजबूत सहारा। 1993 में संयुक्त राष्ट्र ने की थी इस दिवस की शुरुआत।
5: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि। सरकार ने अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत शुल्क मुक्त सोने के आयात की सीमा 100 किलोग्राम तय की। प्रवर्तन निदेशालय ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप में कोलकाता पुलिस उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया। और वुशु में अपर्णा दहिया ने मकाऊ में सांडा विश्व कप में महिला वर्ग के 52 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi to embark on a 6-day visit to UAE, the Netherlands, Sweden, Norway and Italy today. Prime Minister says BRICS under India's chairmanship will work together to build a more inclusive world order. Oil marketing companies hike petrol and diesel prices by 3 rupees per litre. Government caps duty-free gold imports at 100 kg under advance authorization scheme. ईडी अरेस्ट कोलकाता पुलिस डीसीपी शांतनु सिन्हा बिस्वास फॉर रनिंग एन एक्सट्रोशन सिंडिकेट एंड इन वुशु अपर्णा दहिया क्लिंचेस गोल्ड मेडल इन विमेन्स 52 केजी कैटेगरी इन सैंडो वर्ल्ड कप इन मकाओ एंड नाउ द न्यूज इन डिटेल Prime Minister Narendra Modi will embark on a six-day visit to UAE, the Netherlands, Sweden, Norway and Italy today. On the first leg of his five-nation visit, Mr. Modi will reach UAE today, where he will meet President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. The two leaders will exchange views on bilateral issues, in particular energy cooperation, as well as regional and international issues of mutual interest. They will also discuss ways to advance the bilateral comprehensive strategic partnership underpinned by strong political, cultural, economic and people-to-people links. Energy security is expected to remain a central theme of the engagement. Briefing media prior to the visit, Additional Secretary West in the Ministry of External Affairs, Asim Mahajan said, energy remains a key pillar of the relationship. He noted that the UAE was India's fourth largest source of crude oil last year, meeting around 11% of India's requirement. According to him, India is now the largest buyer of LNG from the UAE. The UAE also supplies nearly 40% of India's liquefied petroleum gas imports and remains a significant destination for Indian petroleum exports. Our correspondent has filed this report.
10: India and the UAE have moved far beyond the traditional crude oil trade that once defined their energy relationship. The UAE remains a key oil supply to India, but the partnership has now expanded into natural gas, renewable energy and civil nuclear cooperation. Earlier this year, Hindustan Petroleum signed a 10-year deal with Abu Dhabi National Oil Company for 500,000 tons of LNG annually beginning 2028, giving India greater price stability by reducing its reliance on spot markets. Renewable energy and civil nuclear cooperation are also gaining ground. UAE sovereign wealth funds are actively investing in India's solar infrastructure while India

0: FM 드래그밴 뉴스 뮤직 앤 엔터테인먼트 FM 103 메가헤르츠
1: Food intolerance are allergies laga symptoms too. Vomiting, diarrhea, pet bika, skin rashes, chehara jiba aro lips phulija, sas lobole duk pa khana se. Itu khan laga karan tu, kha lua kunba gaute namila karune hobo pare. Kha lua packets te, kunba ingredients gaute namila laga jankari khan likhi kina thaka tu, bhal para puri lobi. Itu likha khan tu iniga hobo pare, may contain allergen, nohoilebi, lactose free, gluten free. Kalua gaute namila khan tu nakinibi jun khan lactose intolerant ase tai khan dud aro dud para bana saman khan nakhabo lage aro gluten intolerant thaka khan tu ata maida khan nakhabo lage kalua para allergic reactions bishi hoile doctor logote sai lobi itu jankari di ase food safety authority nagaland
2: Well, my dear listeners, आज 40 हो चुका है और सुबह का ये वक्त शायद उन लोगों के नाम जो हर दिन खुद को strong दिखाते हैं, even when उनके दिमाग में हजारों thoughts चल रहे होते हैं. नमस्कार कोहिमा और जो भी हमें अलग अलग जगहों से सुन रहे हैं, आपका स्वागत है on आकाशवाणी कोहिमा FM Dragoban at 103 megahertz. मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे वेरोनिका, वापस लेकर आ गई आपकी वेस्टर्न म्यूजिक प्रोग्राम. और आज की मॉर्निंग थोड़ी सी रियल होगी, ऑलराइट, और थोड़ा दिल की बातें भी होंगे, बिकॉज टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग वी ऑल स्ट्रगल विद. जानना चाहोगे लोग क्या कहेंगे? हैव यू एवर फेल्ट लाइक व्हाट विल पीपल से? मनुकी कुबो ना. कभी नोटिस किया है अगर आपने अपना ड्रीम्स फॉलो किया तो लोग बोलेंगे ज़्यादा उड़ रहा है. अगर चुपचाप कंप्रोमाइज़ करो तो भी वो बोलेंगे इसमें कॉन्फिडेंस ही नहीं है. सच तो ये है, लोगों का काम है कहना, आपको जज करना, कंपेयर करना, ओपिनियंस देना, ये कभी ख़त्म नहीं होंगे मेरे दोस्तों. तो फिर क्यों ना अच्छा एक बार खुद के लिए जिया जाए. वाई नॉट वेयर योर कॉन्फिडेंस प्राउडली, स्पीक ऑनेस्टली और थोड़ा थोड़ा कम ओवर थिंक किया जाए. बिकॉज द पीपल हु जेन्युइनली केयर फॉर यू, दे वोंट मेक यू फील स्मॉल फॉर बींग योर सेल्फ. तो इस मॉर्निंग बस एक छोटी सी रिमाइंडर, डोंट लेट द आउटसाइड नॉइज बिकम लाउडर देन योर इनर पीस. और अब इसी वाइब के साथ लेट द म्यूजिक से द रेस्ट. शुरू करते हैं हमारे वेस्टर्न म्यूजिक विद स्टैंड बाय मी बाय म्यूजिक ट्रैवल लव ओनली ऑन आकाशवाणी FM ट्रगबन 103 मेगाहर्ट्ज़ विद मी आरजे वेरोनिका.
3: One, two, three, four.

Well, yes, my dear, I hope that was a perfect beginning for your beautiful morning, right? And yes, यहाँ पर हमारे पास एक मैसेज बिल्कुल पहले से आ चुका है, तो मैं जल्दी से ले लेती हूँ. गुड मॉर्निंग, होप यू आर स्टार्टिंग दिस फ्राइडे विद लॉट्स ऑफ एनर्जी एंड गुड वाइब्स. आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू योर 3 PM रिक्वेस्ट प्रोग्राम टुडे, एज यू मैंशन बिफोर फॉर फ्राइडेज एंड सैटरडेज. माई नेम इज़ ऋषिकेश जुंगरखर. थैंक यू सो मच. एक्साइटेड टू लिसन. कीप रॉकिंग द शो. वेल ऋषिकेश, इट्स द फर्स्ट टाइम दैट आई एम सीइंग योर नेम ऑन माई स्क्रीन एंड आई एम सो ग्लैड टू यू नो वेलकम यू टू आर वेस्टर्न म्यूजिक सेशन. एंड यस, यू शुड बी एक्साइटेड एज वेल बिकॉज 3 PM दैट इज फोन लाइव इन प्रोग्राम, सो यू कैन ऑलवेज डायल एंड यू नो talk to the RJ as well, right? And you can also request the song that you want. Plus, you can also send in a beautiful message to anyone you like, all right? Aur ji haan dosto, if you would like to send in your message, please feel free to do so. The number is 9436805333. अच्छा लगेगा जब कोई हमारे साथ होगा, है ना? वेल यस, समटाइम्स यू नो वी स्पेंड सो मच एनर्जी वंडरिंग व्हाट पीपल विल थिंक अबाउट अस. लाइक एम आई गुड इनफ, स्मार्ट इनफ, एम आई डूइंग इनफ, और यू नो. बट द ट्रूथ इज पीपल विल ऑलवेज ऑलवेज हैव ओपिनियंस, राइट? नो मैटर व्हाट यू डू, समवन विल you know, definitely misunderstand you, they'll judge you, they'll compare you. So why not live a little more honestly? Wear what makes you feel confident. Dream without feeling guilty, okay? Laugh loudly, be kind without trying to prove yourself all the time. At the end of the day, the people who truly matter will see your heart beyond the noise. So this morning, give yourselves permission to breathe a little easier and stop carrying the weight of everyone else's expectation, okay? And yes, so if this morning you're carrying thoughts you can't really put into words, maybe this next song will, you know, understand them for you.

0: Ape mo ang nu nyukhem jak HIV na AIDS type tha bun heng ni me che gi chinan na HIV sun gnoi jin khai nya hoi shiu san ki wa shan dai gnoi
1: nong nyukhem na HIV sun jin khai nya sau de na te chi si ya chi kam dang mo she yam na sa ape ni hoi kam na ko ta thang mang ao nyukhem na
0: ai lo ko athang mang chun chnoi gan gum chi athang ame jak ashan go
1: nong nyam na nagran s control society na pong ro chi
2: Well, my dear listeners, we have Apiko Tellio from writing Good Morning, nice songs, enjoying your playlist. Well, Apiko, this is the first time as well that I am seeing your name on my screen. So thank you so much and welcome to the show. Welcome to FM Tragoban family. All right. We also have our dear Durgesh Ji, who is a divana of FM Tragoban. Durgesh Ji, good morning, aapko bhi. And yes, Radhe Shyam Ji, Vandana, Bhavna, Bindu Golu, Kusumbai, Babu Divyanj, or Suraj Kumar Dakshi, aap logon ne phir se vakt nikala aur hame namaskar bola. Bahut bahut thank you aapko. Aur yes, hamara show kaise chalu ho sakta hai Durgesh Ji ke pyare shayari ke bina, right? So Durgesh Ji ne apna kaam kar diya hai, bhej diya hai, unhone apna ek andaaz ka jo pyara shayari. To chalte hai aur milke padhte hai, hai na? उठो देखो सुबह का नजरा हवा भी ठंडी मौसम भी प्यारा सो गया चांद छुप गया है सितारा कबूल करो आप हमारे प्यारे सुबह का प्यारा गुड मॉर्निंग हमारे आपके पसंदीदा गाने लगातार एफएम ट्रैगोबान 103 मेगाहर्ट्ज पर लिसनर्स दुर्गेश नागिनपुरे वेल दुर्गेश जी वाह वाह वाह क्या शायरी लिखते हैं आप वैसे भी वी हैव सूरज वर्मा ऋषभ खन्नक और भवना वर्मा प्रेमलाल वर्मा निकेश हर्षिता और ममता भाई वर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में एक बार फिर सपत श्रृंगी रेडियो लिसनर्स ग्रुप भी जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं तो आप सभी का ये जो प्यार है ना हमेशा ऐसा ही रहे हम लोगों का जो ये रिश्ता बना हुआ है ये कभी ना टूटे यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है और यहाँ पे एक आखिरी मैसेज ले रही हूँ हे मैम आर जी गुड मॉर्निंग अमी तो काम कर रही के ना गाना भी होने से और एन्जॉय भी कर रही से होने के ना एन्जॉय कर रही थके से मोहला नाम से Har Singh Pangcho, I am from Karbi Anglong, Devjan Rongpi koi ase. To Har Singh Pangcho, bhal kuri kam kuribi, ete kohimate to aji to din bichi biya se, pani giri gina iman thanda ase, apunar tate, apunar khana ka jakate to pani giri asna, gorom ase, muatun na jane, holi bi bhal kuri, apunar laga khayal rakhi kina, kam kuribi koi kina, koi ek bar janai di ase. Thik ase, and yes, my dear, अगर आप आज किसी को मिस कर रहे हैं तो आई थिंक ये बस लाइव में थोड़ा सा प्यार और वार्म्थ फील करने का मौका है आपके लिए क्योंकि जो अगला गाना आ रहा है इट परफेक्टली फिट्स योर यू नो मॉर्निंग प्लेलिस्ट सो वेयरएवर यू आर राइट नाउ डोंट ओवरथिंक जस्ट एन्जॉय द मोमेंट दिस इज किस मी बाय म्यूजिक ट्रैवल लव
3: वन टू

0: वेल जी हाँ दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको उतना ही अच्छा लग रहा है जितना मुझे आज के सुबह के प्लेलिस्ट प्ले करते हुए। वेल यू नो, म्यूज़िक के साथ साथ अगर आप भी किसी को स्पेशल फील करवाना चाहते हैं तो व्हाई नॉट सेंड अ लिटिल शाउट आउट दिस मॉर्निंग। आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली, कॉलिग या किसी स्पेशल पर्सन के लिए प्यारा सा मैसेज भेज सकते हैं, मे बी अ गुड मॉर्निंग विश या बस एक सिंपल टेक केयर। और हाँ, अगर आप सुन रहे हैं FM ट्रैगवैन 103 MHz तो जल्दी से अपना मैसेजेस भेज दीजिए 9436805333 पर 9436805333। मैं हूँ आरजे वेरोनिका और आपके मैसेजेस का साथ ये गुड मॉर्निंग नागालैंड और भी ब्यूटीफुल बन जाएगी ऑन आकाशवाणी, राइट? और यस, हियर इज समथिंग आई होप यू रिमेंबर दिस मॉर्निंग। द वर्ल्ड बिकम्स मच मोर ब्यूटीफुल व्हेन यू स्टॉप श्रिंकिंग योर सेल्फ जस्ट टू मेक अदर्स कंफर्टेबल। बी काइंड, ओके? यस, be respectful, of course, but never be afraid to be yourself, your love, your dreams, your personality, your story. They don't need permission to exist, my dear. And maybe when we stop worrying so much about judgment, we finally start noticing how wonderful life actually is, all right? So take a deep breath, enjoy this moment, and let this song remind you of the beauty still around us. Here's What a Wonderful World on Akashvani Kohima, FM Trugoban at 103 MHz.
1: 1, 2, 3.

जी हाँ दोस्तों, हम हर रोज हम कितना कुछ सिर्फ इसीलिए सोचते रहते हैं, है ना, कि लोग क्या कहेंगे। यार थोड़ा आराम करो, अपने दिमाग को ठंडा रखो। लोगों का काम तो कहना ही है ना, कभी कपड़ों को लेकर, कभी डिसीजंस को लेकर, कभी अपने लाइफ को लेकर। अगर मोटी हो गई तो बहुत मोटी हो गई, पतले हो गए तो बहुत पतले हो गए, हर चीज में कोई ना कोई होगा जो आपके लिए बोलेगा ही बोलेगा। तो क्यों ना आज में भी थोड़ा सा हल्का फील कीजिए। बी योर सेल्फ अ लिटिल मोर, स्माइल विदाउट ओवर थिंकिंग, स्पीक विदाउट फेयर। ओके, हर बात में अप्रूवल ढूंढना जरूरी नहीं होता, ठीक है। और जी हाँ, इसी पॉजिटिव नोट के साथ, अगर देयर इज समवन ऑन योर माइंड राइट नाउ, मे बी अ कनेक्शन दैट यू हैव, मे बी जस्ट अ फ्रेंडशिप दैट रियली मीन्स अ लॉट टू यू, देन मे बी द नेक्स्ट सॉन्ग विल परफेक्टली फिट योर डे। प्लेइंग मोर देन अ फ्रेंड बाय MLTR।

Well, my dear listeners, Namidi boy and Namidi girl, bi ahije she khabar kini ka ase koi kina gana to be she phal lagi ase bachai thaki bi koi ase. Well, Namidi boy aru Namidi girl abuni dujun bi bishi khushi pai kina gana huni thaka nimide ami bi bishi khushi pai ase aru itia we will go to the next message. Dosti Shairi. Well, you know who send it, right? Let's try. कभी हंसी बनकर साथ देता है तो कभी खामोशी में भी समझ जाता है सच्ची दोस्ती वक्त की मोहताज नहीं होती दिल से दिल जुड़ जाए तो साल महीने नहीं रखते जो बिना बुलाए हाल पूछ ले वही दोस्त जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत होती है दोस्ती में दिखावा नहीं होता यहाँ हर बात दिल से कही जाती है वाह वाह दुर्गेश नागेंद्रपुरे जी मैं तो आपकी शायरों का दीवाना ही हो चुका हूँ और यहाँ पे रोकोविले मेथल लिखते हैं समटाइम्स द आईज आर मोर ऑनेस्ट देन द माउथ यस रोकोविले मेथल दैट इज वेरी ट्रू समटाइम्स वी डोंट हैव वर्ड्स टू से बट हमारी आंखें यू नो दैट ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल आईज ऑफ योर्स says everything, right? Anyways, we have Abhijit. Please, Bokachan. Good morning, sir. Oh, how are you? I'm great. I don't know why, but today I'm feeling very bored and very tired. I don't feel like listening to the radio at all. I feel like sleeping. Well, Abhijit, please don't worry. It happens to every one of us, you know. Sometimes हमें भी ऐसा महसूस होता है कभी आते हैं तो पता ही नहीं चलता कि कौन सा गाना बजाएं या यू नो वी हैव दैट अप्स एंड डाउन्स मूड ऑफ भी होता है कभी कभी मे बी योर बॉडी इज आस्किंग फॉर रेस्ट सो प्लीज़ गो अहेड एंड टेक रेस्ट एज वेल ऑलराइट एंड यस अपना ख्याल रखिएगा ओके एंड विद दैट सेड माय डियर लिसनर्स यू नो आई हैव समथिंग टू टेल यू गाइस व्हेन वी नाउ दैट वी आर ओल्डर Okay, growing older is such a strange thing, isn't it? जब हम छोटे थे, like we couldn't wait to grow up. But जब हम अभी बड़े हो गए हैं, तो we sometimes miss the simplicity of those good old days, है ना? Life changes, people change, responsibilities grow, and somewhere between all that. We quietly learn how strong we really are. But yeah, no matter how old we get, there's always a small part of us still trying to figure life out. And that's completely okay, all right? And so for everyone listening right now, don't be too hard on yourself. You're growing, you're learning, and you're surviving. One day at a time. The song goes out to all of you. This is Older by Shasha Alex Sloan.

Well, yes, my dear listeners, we have some more messages coming in. तो चलते हैं और पढ़ते हैं एक साथ, है ना? Well, we have good morning, RJ. Hope you are fine. I am well. It's me, Hekuto Jimo from Zuneboto. Heavy rain in Zuneboto. Have a nice day. Take care. Hokuto, even in Kohima, it has been morning. Like, it has been raining since morning. So, but it's okay. Sometimes, you know, I love to spend time in the rain as well. I don't know about you guys, but the rain gives me, you know, it helps me set my tone again. It helps me bring my energy down a little bit to set myself to, you know, restart again. So I love listening to soft music when it's raining. Well, it's good to go for a ride as well when it's raining, right? So, Huketo, Ushkim Tival, thank you for writing. And hope you have a beautiful day yourself. Good morning, RJ. Nice song I'm playing, enjoying. More, it's me, Wontongo Nguli, Nyunging Village, Uwaka. Well, Wontongo Nguli, Ponsoka, thank you so much for writing in. I am so glad that you are really enjoying listening to the track this morning. We have RJV Hum FM Tragopan ko 2017 se continue sun rahe hain. Sabse pehle humne FM Tragopan par RJTIA ki awaaz suni. Aajkal wo FM studio par bahut kam aate hain. Haan, Durgesh ji bahut kam aate hain, lekin wo abhi tak hai hamare saath. To chinta mat kijiye, jab main usko milungi, main zarur bataungi ki aap usko yaad kar rahe the. Theek hai? और यस, यहाँ पर एक मैसेज फिर आया है. थैंक यू फॉर प्लेइंग इंग्लिश सॉन्ग्स. बलिपत्थर, शिकारी रोंगफार, जोगेंद्र रोंगपी, रोमेश पत्रो और भाईकोन मुंडा, आप सभी को भी प्यारा सा नमस्कार. आप सभी ने लिखकर भेजा, थैंक यू सो मच. इन्हें कही होने थकी भी और जुड़ी के ना थकी भी को ऐसे. और अभिजीत लिखिया से गलती पर असर लिखी दिशे. गुड मॉर्निंग आरजे वेरोनिका मैम को ऐसे. अभिजीत, गलती सबसे होती है तो माफी न मांगी भी कुन हो, ये चलता ही रहता है. ऑलराइट. एंड यस, कभी कभी ना जिंदगी को परफेक्ट होने की जरूरत ही नहीं होती. ओके, बस दिल को सुकून होना मिलना चाहिए. ऑलराइट, जो भी करो, आपके दिल में अगर सुकून है तो सब कुछ है. और सुकून अक्सर छोटी छोटी चीजों में ही मिलते हैं. राइट, किसी अपने की आवाज में, एक प्यारी सी याद में, या फिर किसी गाने में जो दिल को चुपके से टच कर जाए. तो इस मॉर्निंग बस इतना याद रखिए, आप जितना सोचते हैं उससे कई ज्यादा स्पेशल है. ऑलराइट. और यस, चलते हैं, सुनते हैं ब्लू नाइट. दिस इज MLTR.

वेल माय डियर लिसनर्स, इसी ब्यूटीफुल फीलिंग के साथ आज का ये मॉर्निंग म्यूजिक राइट यही पर एक बार पोज कर देते हैं. पर यस, याद रखिए, दुनिया कुछ भी कहे, अपनी वैल्यू कभी मत भूलिएगा. द राइट पीपल विल ऑलवेज अप्रिशिएट द रियल यू. मैं हूँ आरजे वेरोनिका और आई एम गोना बी लिविंग यू विद अ सॉन्ग दैट फील्स लाइक कम्फर्ट इन इट सेल्फ. आई एम गोना बी अराउंड बाय माइकल लर्न्स टू रॉक. लेकिन कहीं मत जाइएगा, बिकॉज आई बी बैक अगेन एट 10:30 टिल 11 with more western music, more conversations. और अभी अब आपका हिंदी फिल्म सॉन्ग प्रोग्राम शुरू ही होने वाला है. टिल देन टेक केयर ऑफ योर हार्ट, स्माइल अ लिटिल मोर एंड एंजॉय द म्यूजिक.

वेल आपको अपने के लगा मैसेज पूरी दिया से लिखी ना पता से हेलो आर जस सर गुड मॉर्निंग आज तो शांति बड़ा पूरा गाना सुनब आज तो अरुणाचल बन आसे ऑफिस भी छुट्टी आसे आज तो गाना सुनी थकिन भाल भाल गाना बजाय बजाबि तंगनाक एंटी जिरपो ता दो गोपाल तेरन फ्रम हलंगी तेरन आरंग कोईने लिखी आसे अरुणाचल प्रदेश ईटानगर बड़ा वेर थैंक यू सो मच अपनी लिखी ना पता दिया करने यू निचिना होनी थी भाल भाल गाना बजाई ना अपनी सबके भी एंटरटेन करते लिखी आसे दुर्गेश नागानपुरी बाबू दिव्यांश और वंदना नागानपुरी तक लिखी कि पता से तेरे मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा हो हिंदुस्तान जिंदाबाद को लिखी आसे वेल थैंक यू सो मच ये आपको लिखी से गुड मॉर्निंग आरजे बिग सलाम को ना मेरे देश की धरती सोना उगाले उगाले हीरे मोती मेरे देश की धरती लिस्टनर्स से सुरेश वर्मा ऋषभ कनक भावना वर्मा प्रेमलाल वर्मा निकेश हर्षिता और ममता बाई वर्मा वेल थैंक यू सो मच ऑल द वर्मास फैमिली और ये लिखी से बगाजानपरा प्रिया बोरो हेलो माई डियर मिस्ती सर या हेन्साम सर मैं ड्यूटी कुरी गेना हुनी आसु गाना तो अपनी निशिना मिठा आसे दे कोई लिखी आसे लगे रहो बाय आपका दिन शुभ हो कोई ना लिखी आसे वेल थैंक यू सो मच एंड आपका भी दिन शुभ हो मेरी तरफ से वेल थैंक यू सो मच तो नेक्स्ट गाना को हुनी वो कुनाल गंजावाला और सुनिधि चौहान लगा वास्ते से फिल्म आसे चुप चुप के गीत लिखे हुए से शमीर म्यूजिक दिया हुए से हिमेश रेशमिया

That was a really beautiful track, my dear listeners. And yes, don't forget to send in your messages in 94368053333. इंतजार रहेगा हमें आपका मैसेजेस का. ऑलराइट. और यस, वक्त कितनी भी यू नो बिजी हो जाए, लाइफ कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, कभी ये मत सोचिए कि आप इम्पोर्टेंट नहीं हैं. ओके, देर इज ओनली वन यू इन दिस वर्ल्ड. सो विथ योर हार्ट, विथ योर स्टोरीज, विथ योर स्ट्रगल्स एंड विथ दैट ब्यूटिफुल स्माइल ऑफ योर्स, बिलीव मी, आप जितने सोचते हैं उसे कहीं ज्यादा स्पेशल है. ओके, एफएम परिवार से जुड़े हुए हैं और आप हमारे लिए बहुत स्पेशल है. सो यस, डोंट बी हार्श ऑन योरसेल्फ, बी अ लिटिल जेंटल ऑन योरसेल्फ टुडे. थोड़ा सा तो अप्रिशिएट बनता है खुद को कभी कभी. बोल दीजिए, बोल दिया करो कि यू नो मैं अच्छा कर रहा हूँ, मैं जो भी कर रहा हूँ मैं अच्छा कर रहा हूँ और मैं कर सकता हूँ. ठीक है, कभी कभी बोल दिया कीजिए अपने आप को यार. और ये थोड़ा सा और मुस्कुरा भी तो दीजिए, क्यों इतना गुमसुम बैठे हो. और यस, इसी ब्यूटीफुल वाइब के साथ, हियर इज विथ यू बाय क्रिस ब्राउन.

to that sometimes we wait so much for compliments from the world, right? Approval, we need approval sometimes, but हम खुद को ब्यूटीफुल कहना ही भूल जाते हैं, राइट? बट यस, ब्यूटी इज नॉट ओनली अबाउट द फेस, इट्स इन द वे यू केयर फॉर पीपल, द वे यू सर्वाइव हार्ड डेज, एंड द वे यू स्टिल स्माइल आफ्टर एवरीथिंग लाइफ थ्रोज एट यू. सो टुडे डोंट बी सो हार्ड ऑन योर सेल्फ, ओके? आप जैसे हैं वैसे ही बहुत खूबसूरत है. तो चलते हैं और सुनते हैं ब्यूटीफुल बाय अखान.

Well, my dear listeners, वक्त होने को आया है अलविदा कहने का. तो बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करें, वक्त तो चला ही जाता है, किसी का इंतजार नहीं करता है ना. वेल, टीम फ्रॉम लखोटी लिखते हैं, लव आवर गॉड विद ऑल योर हार्ट, विद ऑल योर माइंड एंड विद ऑल योर सोल, डोंट फॉरगेट, प्रे प्रे टू गॉड डेली. वेल टीम, थैंक यू सो मच फॉर रिमाइंडिंग अस दैट वी हैव टू बी अवेयर, वी हैव टू बी कॉन्शियस दैट यू नो गॉड इज ऑलवेज विद अस, एंड विदाउट गॉड आई थिंक नथिंग इज पॉसिबल, राइट? और यस लो माई डियर लिसनर्स, आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट टाइम फॉर मी टू से बाय. बट या समटाइम्स द लॉन्गेस्ट रिलेशनशिप वी विल एवर हैव इज द वन विद आर सेल्फ, ओके? सो यू हैव टू लर्न टू लव योर सेल्फ, बी अ लिटल काइंडर टू योर हार्ट, सेलिब्रेट योर स्मॉल विक्ट्रीज, ओके? इवन व्हेन नोबडी इज सेलिब्रेटिंग यू, डू दैट. एंड स्टॉप डाउटिंग द पर्सन हु हैज सर्वाइव्ड एवरी डिफिकल्ट डे टिल नाउ, दैट इज यू माई डियर. Thank you for spending this beautiful half an hour with me on FM Tragoban. I hope today's music reminded you that you are worthy of love, peace, happiness, and most importantly, your own respect, okay? Mehu RJV, for now I'm signing off, and yes, take care of yourself, keep smiling, or yaad rakhiye, the more you love yourself, the less you settle for, okay? Until next time, goodbye and keep the music alive. Coming up next is your traffic update with news headlines and woman time program.

SMS जो क्विज प्रोग्राम दैट इज आपने फरमाइश आपका फरमाइश का गीत बजाने वाला है. सो इसलिए लिख के भेज दीजिए. नंबर है 9436805333. एक बार आपको कोई दिया से नंबर टू 9436805333 और कोड ऐसे FM स्पेस एच. और लिखने के लिए लिख के भेजिए इस नंबर में और कोड होगा FM स्पेस एच. यस लिसनर्स कैन अपनी गान लिखी ना बताते हैं फिल्म लगा नाम तो ठीक ठाक लिखी ना बताए दीबी और जो जानी आसे कहले फर्स्ट लाइन ऑफ द सॉन्ग आई मीन टाइटल ऑफ द सॉन्ग ये भी लिखी ना बताए दिले बेसि भाल कोई ना जाने दिया से. अगर आप लिख के भेजता है तो मेहरबानी करके ये लिख दीजिए कि फिल्म का नाम अच्छे से लिख दीजिए और अगर जानता है तो वो फर्स्ट लाइन ऑफ द सॉन्ग टाइटल ऑफ द सॉन्ग वो भी लिख के भेज देने से बहुत अच्छा होगा. वेल थैंक यू सो मच. तो प्रोग्राम शुरू कर दिया से अपनी यहाँ लगा मैसेज सुखी था गर्म थे मुझे पहला गीत बजाई दिया से नरेश अय्यर और ए आर रहमान लगा वास्ते फिल्म से रंग दे बसंती.

भगजन पर प्रिया भोरो तैवी लिखी गिना पता से हेलो माय डियर मिस्ती सर मूवी कहीं प्यार ना हो जाए गाना ओ प्रिया प्रिया डेडिकेट ऑल एफ एम फ्रेंड्स को गिना लिखी ऐसे वेल प्रिया अपने लिखी गिना पता से कहीं प्यार ना हो जाए फिल्म ये तो फिल्म तो आसे किंतु ओ प्रिया प्रिया ये तो गाना तो ना ये तो गाने मुझे टाइटल सॉन्ग तो है बजाय दिया से तो होनी किना एंजॉय कर भी वेल लिसनर्स का नीतिया होनी वो कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज़ दे फिल्म आसे कहीं प्यार ना हो जाए

प्रोग्राम तक होने वो प्रॉब्लम के अर्क एक नहीं करो अभी जीत लगा वास्ते फिल्म से ये तेरा घर ये मेरा घर और तू गीत करने लिखी ना बता से वो तुम मुली नुंगिंग विलेज वो खबरा

वेल प्रोग्राम टेको नि वो फिल्म असे फिर हेरा फेरी आरो टू गीत करने लिखी न पता से अभिजीत बोगा जन पड़ता है लिखी न पता से किंतु अभिजीत अपनी मांगी से देने वाले जब भी देता कोई ना तू गाना तो बजाई दी हुआ से किंतु ये तू गाना तो नहीं तू गाने मुझे दूसरा गाना बजाई दिया से तुलसी कुमार और हिमेश ऋषि मैया लगा वास्ते से

प्रेम तो फिर हेरा फेरी लगा से दिल नयो मने रे इतु गाना तो बजाई दिया से सो हुनी गिना एन्जॉय कर भी एंड हमय बाबूजी 30 मिनट हो लके अपनी गन हुनी आबो न्यूज हेडलाइंस तापो से तो आपको प्रोग्राम तो कंटिन्यू करिया करबो।

वेलाको दूसरो गीत हुनुभयो के मोहम्मद रफी और सुषमा श्रेष्ठ लगा वास्ते फिल्म से हम किसी से कम नहीं और दू गीत करने लिखी न पता से चंद्र तिमुंग बिना एंग टीपी पथिर तिमुंग सरपंग्री तिमुंग और अतुर तिमुंग पी तक इतु गाना डेडिकेट कर दिया से सब लिसनर्स के हुनी थका सब की भी लिखी ना से एंड ऑल द फैमिली

0: प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त अरब अमीरात में एक सम्मानित व्यक्ति बताया। प्रधानमंत्री मोदी अगले चरण में नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली भी जाएंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने बताया कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति और उसके प्रभावों पर चर्चा की। उन्होंने आपसी हित के द्विपक्षीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। डॉ जयशंकर ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में श्री अराक्ची की भागीदारी की सराहना भी की। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज सीएनजी गैस की कीमतों में 2 रुपये की वृद्धि की है। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सरकार ने अब अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। पहले इस योजना के तहत सोने के आयात की कोई सीमा नहीं थी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता हैं और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है।
1: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, ओएमआर शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारी विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते एनटीए ने तुरंत एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाए। 2 से शुरू होगा, 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। एडमिट कार्ड, इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुंच जाएगा।
0: श्री प्रधान ने कहा कि वर्तमान में ओएमआर मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी माध्यम से होगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि एनटीए में ठोस सुधारों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भविष्य में किसी भी तरह की अनियमितताओं को रोकने के लिए परीक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने संबंधी उपाय किए जाएंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत सुधारित और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉ जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना में सुधार की तत्काल जरूरत है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में रथेंद्र बसु निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। श्री बसु कूचबिहार दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं। कार्यवाहक अध्यक्ष तापस रॉय की देखरेख में आज सुबह चुनाव संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने औपचारिक रूप से श्री बसु के नाम का प्रस्ताव रखा। सदन ने ध्वनिमत से उनके नाम की पुष्टि की। तृणमूल कांग्रेस के सदस्य चुनाव प्रक्रिया के दौरान उपस्थित नहीं थे, लेकिन बाद में सत्र में शामिल हुए। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में मामूली बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 250 अंक बढ़कर 75,649 पर, जबकि निफ्टी 81 अंक की वृद्धि के साथ 23,770 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। कल मुंबई इंडियंस ने धर्मशाला में पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी
1: इंडियन कैंसर सोसाइटी कहने आए हैं ये बात, कैंसर को हराना है हमारे साथ, कैसे इससे लड़ना है सुनो हमारी बात, क्योंकि कैंसर नहीं है लाइलाज, दुख में सुख में हम हैं आपके साथ, इंडियन कैंसर सोसाइटी।
2: नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल इंडियन कैंसर सोसाइटी की ओर से सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ।

आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जिसके बारे में जागरूकता बहुत कम है, लेकिन जानकारी होना हर महिला के लिए बेहद जरूरी है। आज का विषय है एंडोमेट्रियल कैंसर। ये एक ऐसा कैंसर जो महिलाओं के गर्भाशय की अंदरूनी परत में होता है और जिसकी समय पर पहचान एक महिला की जिंदगी बचा सकती है। फिर आप जानते हैं, मीनोपॉज के बाद होने वाली हल्की सी ब्लीडिंग भी कैंसर जैसी भयानक बीमारी का संकेत हो सकती है। क्या आप जानते हैं, मोटापा, PCOS और हार्मोनल असंतुलन के बढ़ने के साथ साथ एंडोमेट्रियल कैंसर के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। ये कैंसर उनमें से है जिन्हें अगर शुरुआती स्टेज में पकड़ लिया जाए तो इलाज की संभावना काफी बेहतर होती है। सबसे पहले समझते हैं कि एंडोमेट्रियल कैंसर आखिर होता क्या है। महिलाओं के शरीर में एक महत्वपूर्ण अंग होता है, गर्भाशय यानी यूट्रस। गर्भाशय के अंदर एक परत या झिल्ली होती है जिसे एंडोमेट्रियम लेयर कहा जाता है। हर महीने मासिक धर्म के दौरान ये परत बनती और टूटती है, लेकिन जब इस परत की कोशिकाएं असामान्य तरीके से बढ़ने लगती हैं और उनका नियंत्रण खत्म हो जाता है तो ये कैंसर का रूप ले सकती हैं। इसी को कहते हैं एंडोमेट्रियल कैंसर। अगर आंकड़ों की बात करें तो 2020 के आंकड़ों के अनुसार भारत में 16,000 से अधिक नए मामले दर्ज किए गए, जिनमें से 6,000 से अधिक मौतें एंडोमेट्रियल कैंसर के कारण दर्ज की गई। विशेषज्ञों का मानना है आने वाले वर्षों में बढ़ता मोटापा, डायबिटीज, कम शारीरिक गतिविधि, हार्मोनल असंतुलन और बदलती जीवन शैली इस बीमारी के मामले में और वृद्धि कर सकते हैं। भारत के शहरी क्षेत्रों में इसका खतरा ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक देखा जा रहा है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, ये कैंसर शुरुआती समय में संकेत देता है, लक्षण दिखाई देते हैं, परंतु महिलाएं शर्म, संकोच या जानकारी के अभाव में इसे उम्र का असर, हार्मोनल बदलाव इत्यादि समझकर नजरअंदाज कर देती हैं। नतीजा, डायग्नोज बहुत लेट होता है और लेट डायग्नोज का मतलब इलाज में जोखिम ज्यादा। अगर शुरुआती समय पर ये कैंसर की जांच हो जाए और कैंसर पकड़ में आ जाए तो 90-95% केसों में इन महिलाएं पूरी तरह से स्वस्थ हो सकती हैं और बीमारी पर काबू पाया जा सकता है। तो आए जाने ऐसे कौन से लक्षण हैं जिनको ध्यान में रखने पर हम इसको अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं। मीनोपॉज के बाद ब्लीडिंग, ये सबसे महत्वपूर्ण चेतावनी संकेत है। यदि किसी महिला के पीरियड्स बंद हो चुके हैं और फिर भी ब्लीडिंग हो रही है तो इसे कभी भी सामान्य ना समझें, डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। अनियमित पीरियड्स, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होना, समय समय पर स्पॉटिंग होना, लंबे समय तक पीरियड्स का चलना इत्यादि, सफेद या पानी जैसा डिस्चार्ज, कई महिलाओं को लगातार वाटरी डिस्चार्ज होता है जिसमें दुर्गंध आती है, ये डिस्चार्ज गुलाबी या भूरे रंग का भी हो सकता है, पेट के निचले हिस्से में दर्द, दबाव या भारीपन महसूस होना, लगातार कमजोरी और थकान का बने रहना, इन सब सिम्टम्स को नजरअंदाज मत करें। याद रखें, हर ब्लीडिंग कैंसर नहीं होती, लेकिन हर असामान्य ब्लीडिंग की जांच होना जरूरी है। क्या कारण है, क्यों होता है ये कैंसर? विशेषज्ञ बताते हैं कि इसका सबसे बड़ा कारण शरीर में ईस्ट्रोजन हार्मोन का असंतुलन है। ईस्ट्रोजन हार्मोन एक फीमेल सेक्स हार्मोन है। जब शरीर में ईस्ट्रोजन का प्रभाव लंबे समय तक बढ़ जाता है तो एंडोमेट्रियम कोशिकाएं तेजी से बढ़ने लगती हैं। किन्हें हो सकता है इसका खतरा? आए जाने, मोटापा इसका सबसे बड़ा जोखिम कारक है, क्योंकि शरीर की अतिरिक्त चर्बी ईस्ट्रोजन हार्मोन बनाती है। PCOS यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम वाली महिलाओं में हार्मोनल असंतुलन के कारण खतरा बढ़ सकता है। डायबिटीज और हाई BP, मेटाबॉलिक समस्याएं भी इसी से जुड़ी हुई हैं। देर से मीनोपॉज यानी कि जिन महिलाओं में पीरियड्स काफी लंबे समय तक आते हैं और देर बड़ी उम्र में मीनोपॉज होता है। कभी भी गर्भधारण ना होना,

फैमिली हिस्ट्री, यदि परिवार में यूट्रस, ओवेरियन और कोलोन कैंसर रहा है तो सजग रहें। बढ़ती उम्र, ये कैंसर 50 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं में देखा जाता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में महिलाएं अक्सर अपने भोजन, नींद, मानसिक स्वास्थ्य और शरीर के संकेतों को नजरअंदाज कर देती हैं। जंक फूड, तनाव, स्क्रीन टाइम, कम नींद और फिजिकल एक्टिविटी की कमी धीरे धीरे शरीर में हार्मोनल सिस्टम को प्रभावित करती है। बीमारी अचानक नहीं आती, शरीर पहले छोटे छोटे संकेत देता है। सवाल है कि क्या इससे बचा जा सकता है? जी हाँ, कई मामलों में इसका खतरा काफी हद तक कम किया जा सकता है। क्या करें? वजन को नियंत्रण में रखें। सिर्फ 5 से 10% वजन कम करने से भी हार्मोनल स्वास्थ्य बेहतर हो सकता है। रोज व्यायाम करें, तेज साल से चलें, योग, स्ट्रेचिंग, प्राणायाम को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। संतुलित भोजन लें, अपने भोजन में हरी सब्जियां, फल, साबुत अनाज, बीज और नट्स, हाई फाइबर फूड शामिल करें। परहेज करें ज्यादा चीनी, पैकेज्ड फूड, अधिक तला हुआ भोजन, ट्रांस फैट इत्यादि से परहेज करें। PCOS और थायराइड का इलाज करवाएं। डॉक्टर की सलाह से ही हार्मोन दवाइयों का इस्तेमाल करें, इसे इग्नोर ना करें। तनाव को कम करें, स्ट्रेस हार्मोन्स भी शरीर के संतुलन को प्रभावित करते हैं। 40 वर्ष की उम्र के बाद महिलाओं को नियमित गायनेकोलॉजिकल चेकअप करवाते रहना चाहिए। हमेशा इलाज से परहेज बेहतर है। कैंसर शब्द सुनते ही डर लगना स्वाभाविक है, लेकिन हर कैंसर का मतलब जिंदगी का अंत नहीं होता। अगर एंडोमेट्रियम कैंसर की शुरुआती स्टेज में पकड़ लें तो इलाज के परिणाम काफी अच्छे हैं। इलाज मरीज की उम्र, स्टेज और स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। डॉक्टर, सर्जरी, रेडियोथेरेपी, हार्मोनल थेरेपी, कीमोथेरेपी की मदद से इस बीमारी को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। अगर समय पर पहचान हो जाए और सही इलाज मिले तो कई महिलाएं पूरी तरह से स्वस्थ जीवन जी सकती हैं। आज महिलाएं पूरे परिवार की जिम्मेदारी निभाते निभाते अपनी सेहत को पीछे रख देती हैं। शर्म, संकोच या जानकारी के अभाव में डॉक्टर के पास देरी से पहुंचती हैं। याद रखिए, यदि आप स्वस्थ रहेंगी तभी तो परिवार भी स्वस्थ रहेगा। अगर आपके आसपास कोई महिला मेनोपॉज के बाद ब्लीडिंग, असामान्य डिस्चार्ज, अनियमित पीरियड्स या पेल्विक दर्द या लगातार कमजोरी महसूस कर रही हो तो उसे डॉक्टर पर जाने के लिए प्रेरित करें, चुप रहने के लिए मत कहें। आज का संदेश बहुत स्पष्ट है, शर्म नहीं जागरूकता जरूरी है, डर नहीं समय पर जांच जरूरी है। अपने शरीर के संकेतों को नजरअंदाज मत करें। हर एबनॉर्मल ब्लीडिंग कैंसर नहीं है, परंतु जांच जरूरी है। याद रखें, कैंसर की लड़ाई में सबसे बड़ी ताकत समय पर पहचान है। खुद से वादा करें, मैं अपने शरीर को गंभीरता से लूंगी, लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करूंगी। इंडियन कैंसर सोसाइटी कैंसर के क्षेत्र में कई वर्षों से कार्यरत है। इनके 3 विंग्स हैं, जागृति, सहयोग और प्रशांति। जागृति में हमारे वॉलंटियर्स टॉक्स, रेडियो टॉक्स, स्क्रीनिंग कैंप्स, वेबिनार्स इत्यादि के जरिए लोगों में अवेयरनेस फैलाने और जागरूकता लाने का प्रयास करते हैं। सहयोग में हमारे वॉलंटियर्स दिल्ली और NCR के सभी प्रमुख हॉस्पिटल्स में जाते हैं और इलाज करा रहे पेशेंट्स की हर संभव मदद और सहयोग करने का प्रयास करते हैं। प्रशांति में हम इलाज करा चुके पेशेंट्स को दोबारा से कॉन्फिडेंस बिल्ड करने, इमोशनल सपोर्ट और पुनर्निर्वास में मदद करते हैं। अनेक तरह के प्रोजेक्ट्स में उन्हें शामिल करते हैं ताकि उनका हौसला और कॉन्फिडेंस दोबारा आ सके। इंडियन कैंसर सोसाइटी का डिटेक्शन सेंटर 42 बाबर रोड नियर बंगाली मार्केट न्यू दिल्ली में स्थित है, जहां विशेषज्ञ द्वारा बहुत कम कीमत पर शुरुआती जांच का फायदा उठाया जा सकता है। इंडियन कैंसर सोसाइटी की ऐप राइज अगेंस्ट कैंसर प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और 5 विभिन्न भाषाओं द्वारा कैंसर में कैंसर विशेषज्ञ द्वारा दी गई जानकारी का फायदा उठाएं। हमारी

0: हेल्पलाइन नंबर है 9910516562। आई रिपीट 9910516562। ये वार्तालाप पंचशील फाउंडेशन के द्वारा प्रस्तुत की जा रही है। मैं इंडियन कैंसर सोसाइटी की ओर से उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद।
1: इंडियन कैंसर सोसाइटी कहने आए हैं ये बात, कैंसर को हराना है हमारे साथ, कैसे इससे लड़ना है सुनो हमारी बात, क्योंकि कैंसर नहीं है लाइलाज, दुख में सुख में हम हैं आपके साथ, इंडियन कैंसर सोसाइटी।

गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो, और आज क्या दिन है आप जानते ही होंगे। और आज है फ्राइडे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये जो फ्राइडे है ये खास फ्राइडे है। आज है मंथ का थर्ड फ्राइडे, और आज के दिन आपका पसंदीदा कार्यक्रम, जिसका आपको ही नहीं बल्कि हमारे सभी रेडियो जॉकी, सभी प्रेजेंटर्स को भी इंतज़ार रहता है, और कार्यक्रम है बिंदास बोल। आज बिंदास बोल में मैं हूं रंजन आपके साथ। आप चाहें तो हमें आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर नोट कर लीजिए 9868107070। और किसी भी कार्यक्रम से जो रेनबो पर प्रसारित होता है उससे जुड़ी कोई शिकायत है, कोई तारीफ है, कोई सुझाव है, ऑल आर मोस्ट वेलकम। आपकी कुछ ईमेल्स भी मेरे पास हैं, वो भी जरूर लेंगे। तो बस फिर बने रहिए इस कार्यक्रम में।

जी हाँ, सुनिधि चौहान की आवाज में ये खूबसूरत गीत आप सुन रहे हैं। और ऐसे ही बहुत प्यारे प्यारे नगमे, गीत और ढेरों बातें आप सुनते ही रहते हैं आकाशवाणी रेनबो के ऊपर। और जैसा मैंने आपको बताया कि देखिए, कुछ लोगों को आज वो गलत फहमी हो गई है कि भाई ये प्रोग्राम जो है मेरे वाला सॉन्ग का है और वो बिना सुने ही मेरे को रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। तो अगर आप अब रेडियो सुन रहे हैं, तो मैंने जैसे बताया कि आज थर्ड फ्राइडे है, थर्ड फ्राइडे ऑफ द मंथ हमारा खास कार्यक्रम बिंदास बोल आता है। वैसे इससे जुड़ा हुआ एक कार्यक्रम मैंने कई साल पहले किया था, उसकी भी चर्चा करूंगा। और क्यों करूंगा बताता हूँ, क्योंकि आपकी मेल्स मेरे पास हैं, बहुत बड़ी बड़ी, कई लोगों ने अच्छी मेल्स तो सभी अच्छी लिखी हैं। और साथ ही साथ अगर आप चाहें अभी के अभी तुरंत, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9868107070 पर। जैसे हमारे पास मैसेज लिख के भेजा है पंकज ने अमरावती से, और कह रहे हैं सर मैंने आकाशवाणी पर ईमेल भेजा था। मैं देखता हूं पंकज, शायद आपका ईमेल मेरे पास आया है कि नहीं, आई रियली हैव टू सी। और ये आजकल तो ईमेल और व्हाट्सएप का ज़माना आ गया। एक दौर वो था जब हम सिर्फ पोस्ट कार्ड मंगाते थे। मैं आज से कुछ साल पहले की बात कर रहा हूँ। एक हमारा कार्यक्रम हर हफ्ते आता था, पोस्ट बॉक्स 503, जिसमें दो आवाज़ें होती थी, आकाश और वाणी की। उसके अंदर एक आवाज़ आकाश की कई साल मेरी भी रही थी। खैर, अब पुरानी बातों को नहीं करते, आज की बात करते हैं। आदाब भेजा है हमारे पास, नाम है इनका पूरा अब्बास परिवार है, आपके बड़े सारे नाम भेजे हैं भैया आपने, फारूक अली खान, फैजी, फराज, फरीन, फरहान, वारिया, ताहिरा, बुलंद शहर से लिखते हैं। और लिखते हैं किसी भी गीत में शामिल कीजिएगा। तो आप भी जागिए, आपके अभी कार्यक्रम आज चल रहा है बिंदास बोल। और मैं बिंदास बोल में जो पहली ईमेल लेने जा रहा हूँ वो है इरशद जहान की, जो असम नज़ीरा से हमारे पास लिख के भेज रही हैं। इन्होंने मोक्षी जी के नाम ये ईमेल लिखी है, लेकिन हम बताना चाहेंगे आज मोक्षी जी नहीं है इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रही, मैं कर रहा हूँ, मेरा नाम है रंजन। तो कोई बात नहीं, बात आपकी हम पढ़ देते हैं। विषय अच्छे लेते हैं आप, ड्राइविंग और ऑपरेशन परीक्षाओं में लिखना धैर्य से और वक्त से अंदर आपको जाना चाहिए। अगर काम में पूर्णता लानी है तो जल्दी नहीं बल्कि धैर्य से काम करना चाहिए, और मुझसे भी जल्दी में काम करने में गलतियां हो जाती हैं। तो इरशद जी, आपकी ये जो बात है ये लगता है किसी पिछले कार्यक्रम से आपने जोड़ के भेजी है, तो कोशिश कीजिए। अब मैं उसका संदर्भ तो नहीं समझ पा रहा हूँ लेकिन आप ड्राइविंग की और धैर्य की बात कर रही हैं, तो हम सबको यहाँ पर संदेश आपके द्वारा देना चाहते हैं कि जब भी आप गाड़ी चलाएं या सड़क पे हों तो धैर्य से रहें, ताकि आप अपना भी नुकसान ना करें और किसी और का नुकसान ना करें। और ड्राइविंग में तो करना ही होता है, बाकी आपने लिखा है कि परीक्षाओं में भी आपको धैर्य रखना है, विच इज़ वेरी ट्रू। आप चाहें तो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9868107070 पर। आपको हमारे आकाशवाणी रेनबो के किसी भी कार्यक्रम के बारे में, उसके संदर्भ में कोई भी बात कहनी है, आप लिख के भेज सकते हैं हमारे पास। आपके जो सुझाव हैं उनको हम बड़े गौर से देखते हैं, उन पे काम करते हैं। आपकी तारीफों के लिए हम अपनी पलके बिछा के बैठते हैं, और आपके जो शिकायतें हैं उन्हें हम बहुत गौर से सुनते हैं और उन्हें करेक्ट करते हैं, क्योंकि आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़।

गुड आफ्टरनून, आप सुन रहे हैं बिंदास बोल, और आज बिंदास बोल में मैं हूं रंजन आपके साथ। चलिए आपकी एक ईमेल और लेते हैं। विजय कुमार नामदेव ने दिल्ली से हमारे पास मेल लिख के भेजी है और बहुत सारी बातें उन्होंने लिखी हैं। जाहिर सी बात है, ये लिख रहे हैं कि इन्हें चंद्रानी मुखर्जी का मैसेज मसाला मिक्स पसंद आता है। इसके अंदर इस कार्यक्रम में इन्हें जो लास्ट इन्होंने 2 और 3 मई को लिखते हैं कि सुना था और उसमें जो टॉपिक था इन्हें बहुत अच्छा लगा। इसके अलावा सबिया नकवी का बहुत दिनों बाद इन्होंने कार्यक्रम सुना, इन्हें बहुत अच्छा लगा। 19, 20 और 23 अप्रैल की बात कर रहे हैं और आपकी याद आती रही प्रोग्राम में उन्होंने एक से बढ़कर एक 90s के सॉन्ग बजाए थे जिन्हें सुनकर ये बहुत सुकून महसूस कर रहे हैं, और जो ओल्ड सॉन्ग्स शायरी और मोटिवेट करने वाली बातें करती हैं उन्हें सुनकर बहुत सुकून मिलता है, ऐसा लिखा मैंने। और साथ ही साथ ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सुप्रभात प्रोग्राम में जो प्रेजेंटर्स हैं उनसे कहिए कि सुबह के समय पूरे दिन के जो हमारी कार्यक्रम होते हैं उनके बारे में बताएं, क्योंकि कुछ आरजेस नहीं बताते हैं जिससे कि ये मिस कर जाते हैं कि जो उनके बेस्ट या फेवरेट आरजेस हैं वो उस समय आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। देखिए, ये हमारा बिल्कुल प्रयास रहता है, लेकिन क्योंकि आप जानते हैं, क्योंकि ये लाइव प्रोग्राम होता है, सजीव होता है, और इसमें जब टाइम का कई बार कंस्ट्रेंट हो जाता है तो हो सकता है कभी कभार आपने सुना हो और ऐसा वही दिन हो जब आपने सुना हो, और सुबह से लेके रात 12 बजे तक के कार्यक्रम जनरली बताते हैं। अगर उन्होंने नहीं बताए तो उसके लिए माफ़ी, वरना आप कोशिश कीजिएगा। मैं भी कई बार सुनता हूँ सुबह उठ के, तो बाकायदा पूरे दिन की जो विवरण है कार्यक्रम की, जो लिस्ट है, वो बताई जाती है। पंकज अमरावती महाराष्ट्र से लिख रहे हैं कि आकाशवाणी रेनबो दिल्ली के कार्यक्रम रोजाना सुनते हैं और इन्हें बहुत अच्छे लगते हैं, सभी आरजेस की प्रस्तुति बहुत बढ़िया लगती है। और आगे लिख रहे हैं कि आकाशवाणी के 90 साल पूरे होने के अवसर पर आकाशवाणी @90 इस श्रृंखला में आरजे निशा भारद्वाज मैम जी का रोज गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR में वो जो जानकारियां देती हैं ये इन्हें बहुत पसंद आ रहा है। तो थैंक यू सो वेरी मच पंकज जी। इनफैक्ट आजकल आप सुन रहे होंगे, आज सुबह भी ऐसी ही 90 साल पूरे होने पर जो जानकारियां दी गई मैंने खुद भी सुनी है, कई दिनों से हम सुन रहे हैं, और इसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मुझे भी नहीं पता थी, और जाहिर सी बात है इससे आपके भी ज्ञान में बढ़ोतरी होगी, और ये बहुत दिलचस्प रोचक जानकारियां, आपने इनको पसंद किया उसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। आप सुन रहे हैं बिंदास बोल, और हमें मैसेज करने के लिए व्हाट्सएप नंबर रहेगा 9868107070। थोड़ी देर में लेंगे आपके व्हाट्सएप मैसेज, तो बस जुड़े रहें आकाशवाणी के संग।

0: बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेंबो पर रात 9 बजे।
3: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
4: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

हाँ, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप सुन रहे हैं बिंदास बोल और आपके मैसेजेस लेने का समय आ गया है। जैसा ये हमें पास लिख के भेजा है गौरव ने, और लिखते हैं कि रंजन जी नमस्कार, बहुत दिनों बाद आपकी आवाज़ सुनी और बहुत दिनों के बाद एफएम रेनबो भी सुना। आपको हॉटलाइन बातें इधर उधर कार्यक्रम में सुना करते थे, शायद हर मंगलवार। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, शायद नहीं, इट इज़ ट्रू। उसके बाद वो कार्यक्रम बदल के नाम हो गया था उस टाइम पे, बात से बने बात। तो जो हॉटलाइन था उसके अंदर तो हम आपके कॉल्स लेते थे, फिर आपके मैसेजेस लेने लगे। अब वो आप लिखते हैं कि बुधवार को प्रीति मोहन जी आती थी और सोमवार को सुषमा जी आती थी, इसलिए मुझे भी याद है कि मैंने आपको उस कार्यक्रम में सुना था, काफ़ी अच्छा लगता था। बहुत दिनों के बाद आपको सुना, बस कहना चाहता हूँ कि बिंदास बोल को हर हफ्ते करवा दीजिए। ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड, इनफैक्ट इवन आई फील कि हर हफ्ते होना चाहिए, बट ठीक बात है, जायज़ आपने बात कही है। और आप कह रहे हैं अभी बहुत सारे गाने सुनाए, उसके पीछे कुछ राज है, वो राज की बात थोड़ी देर में बताऊंगा। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, कितने गौर से सुनते हो भाई, आप तो पिछले 5-7-10 साल पुरानी बातें भी बता रहे हो। तो प्रीति जी तो अब रिटायर हो गई हैं और वैसे कभी कभी यहाँ आती हैं, उनको भी आपका हम यू नो आपका नमस्कार पहुँचा देंगे। और उसके अलावा बहुत सारे लोग हैं, गुड्डू धाकड़ लिख रहे हैं कि बात से बने बात को फिर से चालू कराइए, यही बात लिख के भेजा है हमारे पास। एक और नाम है दीपक खत्री फरीदाबाद से, और ये लिखते हैं कि 10 बजे पर बात से बने बात प्रोग्राम अच्छा लगता था, उसको दोबारा से चलवा दो। हाँ जी, बस आपने कहा तो चलवा देते हैं। देखिए अब क्या है कि सुबह 10 बजे का जो कार्यक्रम है वो वेस्टर्न म्यूजिक वालों की तरफ चला गया है, तो हमारा तो स्लॉट ही चला गया है। आई हाई इवन आई फील इट सो, बिकॉज पता क्यों, मेरा तो बहुत जुड़ाव था भाई, मैं वो खास कार्यक्रम खुद ही करता था, तो आई कैन अंडरस्टैंड। आपसे ज़्यादा दुख तो मुझे हो रहा है, लेकिन आप इस तरह से मैसेजेस भेजते रहिए, पता नहीं भगवान कब सुन ले, और भगवान से पहले भगवान का इंसान कब सुन ले, यानी हमारे जो ऊपर बॉसेस हैं, जो लोग नीति बनाते हैं और जो इस चीज़ के लिए जिम्मेदार हैं कि किस समय क्या जाएगा, हो सकता है सुन के 10 बजे हमें वापस ऑन एयर कर दें। नहीं, आई एम जस्ट सेइंग इट इज़ पॉसिबल, बट इसीलिए तो ये कार्यक्रम बना है जिसका नाम है बिंदास बोल। और यहाँ पर आपके जो बोल हैं, जो आपके वचन हैं, आपकी जो बातें हैं, बिल्कुल बिंदास तरीके से बिना किसी संकोच के आप जो करते हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है। अब देखिए, इतनी प्यारी ईमेल लिख के भेजी है, बहुत बड़ी ईमेल लिखी है, थोड़ा सा यहाँ पे मैं पढ़ देता हूँ। संजीव कुमार ग्राम खुखानी जिला करनाल हरियाणा से लिखते हैं, महोदय मैं वर्ष 2007 से एफएम रेनबो सुन रहा हूँ और आकाशवाणी दिल्ली का श्रोता हूँ। कह रहे हैं कि इसके अंदर इस कार्यक्रम में मैं आपको श्रोताओं पर मैंने श्रोताओं के पत्रों पर आधारित कार्यक्रमों में पोस्टकार्ड और अंतरदेशीय पत्र कार्ड कई पत्र लिखे और भेजे हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, 2007 से पहले की भी अगर मैं बात करूं तो बोरे भर के चिट्ठियां और पोस्टकार्ड आते थे, मैं मजाक नहीं कर रहा, बोरी भर के। उन्हें उठाने के लिए बाकायदा 2 लोग लगते थे, और क्योंकि मैंने जैसे पहले भी जिक्र किया, एक कार्यक्रम आता था पीओ बॉक्स 503 जो हर हफ्ते आता था, और उसमें मैंने कुछ एक साल मैंने भी आवाज दी, तो उस कार्यक्रम से पहले बहुत सारे पोस्टकार्ड हमें शॉर्टलिस्ट करने पड़ते थे, पढ़ने पड़ते थे, और आपकी हैंडराइटिंग जो होती थी अलग अलग लोग की, हर किसी की अपनी हैंडराइटिंग होती है, उसको समझने के लिए बहुत सारी हमारा प्रयास उसमें जाता था। लेकिन क्योंकि अब मैसेजेस आते हैं या ईमेल आते हैं, तो उसमें ये जो हैंडराइटिंग की जो बात है वो तो अब दूर की बात हो गई, और टेक्नोलॉजी ने हमें इसमें तो ज़रूर साथ दिया। खैर, अब और बहुत सारी यहाँ पर बातें आपने लिख के भेजी हैं। आपने लिखा है कि रश्मि जी का इन्होंने कार्यक्रम सुना, सुषमा जी का कार्यक्रम सुना, सिटी लाइट्स उनको पसंद आया। इसके अलावा बहुत सारी बातें हैं, और एक बड़ी ख़ास बात लिखी कि डायल करियर नाम का कार्यक्रम होता था और इसे सुनते थे, और मेरे ख्याल से इस तरह का कार्यक्रम अभी भी आता है या नहीं आता है, अगर आप कहते हैं, लेकिन करियर से रिलेटेड हमारे बहुत सारे एक्सपर्ट्स यहाँ पर कभी ना कभी आते ही रहते हैं, हर वक्त आते हैं, और स्पेशली जब एडमिशन्स का दौर होता है या फिर कॉलेज में या फिर स्कूल्स में, उस टाइम तो हम उससे रिलेटेड इस तरह के कार्यक्रम ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, ताकि जो बच्चे हैं उनको एडमिशन में या करियर चुनने में आसानी हो सके। तो बस इसी तरह से अपना प्यार आपने बनाए रखना है, हमको सुनते रहना है। यहाँ पर फिर से एक गाना आपको सुनवाता हूँ। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम बिंदास बोल, आपके मैसेजेस लेंगे, ईमेल्स लेंगे, जुड़े रहें आकाशवाणी के संग। दिन के 2400 घंटे, साल के 365 दिन।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

वेलकम बैक आफ्टर दैट ब्रेक। आप सुन रहे हैं बिंदास बोला और आपकी थोड़े से समय बहुत सारे मैसेज लेने का मेरा मन है, इसलिए सीधा कमिंग टू द पॉइंट। अनिता मुखी, सिमरन मुखी और सुदर्शन मुखी का ईमेल भी मेरे पास है। साथ साथ इन्होंने इतना प्रयास किया कि इन्होंने मैसेज भी कर दिया है कि लिख रहे हैं कि मेरे वाला सॉन्ग अपनी पसंद का गीत सुनने के लिए। 1:39 में मैसेज भेजा था, हमारी पसंद का गीत सुनवाया तो बहुत दूर की बात हमारा मैसेज भी कार्यक्रम से दूर रखा गया। फिर हमारे मैसेज भेजने और कार्यक्रम सुनने का अर्थ क्या रहा? बहुत निराशा हुई कार्यक्रम से। पहले तो मुझे आपके इन दो शब्द जो आपने लिखे हैं ये सुन के या ये पढ़ के मुझे देखिए मैं मिक्स्ड फीलिंग्स हो रही हैं। और आखिर में आप लिखते हैं कोटि कोटि धन्यवाद। पहले आप निराश हैं, उसके बाद करोड़ों धन्यवाद दे रहे हैं। देखिए मैं समझ सकता हूँ क्योंकि ये कार्यक्रम मैं भी करता हूँ, मेरे वाला सॉन्ग। इसमें हमारी मजबूरी ये होती है कि देखिए पूरे एक घंटा 55 मिनट का अगर कार्यक्रम है तो उसके अंदर हम 8, 10, 12 रिक्वेस्ट ले सकते हैं हद लगा के, और जोर लगाएं तो 15 गाने, वो भी अगर थोड़ा थोड़ा गाना चलाएं तो फिर वो गाने के साथ नाइंसाफी होगी। ऐसे में हमारे पास अगर 150, 200, 500 मैसेज आ जाएं तो आप बताइए कुछ मैसेज छूट जाएंगे ना, तो दुर्भाग्यवश आपके मैसेज उसमें छूट गए। बाकी मुझे याद पड़ता है आपके, मैंने अपने कार्यक्रम में बहुत दफ़ा आपके गाने शामिल किए हैं। तो निराश मत होइएगा, ट्राई करते रहिए क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुझान, रसरियात जात के सिल पर पड़े निशान, तो फिर आरजे के सर पर भी निशान पड़ सकता है आपके। आपकी बातों का खैर, जोक्स अपार्ट, वी रियली लव जब आप इस तरह से हमारे साथ इंटरेक्ट करते हैं, जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं। अच्छा, सुदर्शन जी लिख रहे हैं जिला मुरादाबाद यूपी से कि बात से बने बात प्रोग्राम कहाँ कर दिया, वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। कहाँ कर दिया मतलब कहाँ चला गया? आएगा आएगा, आज बहुत सारे लोगों की इसके लिए रिक्वेस्ट आ रही है और हम अपनी कॉपी में से रिकॉर्ड करते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं इसका हो सकता है, आप यू नो जस्ट बी होपफुल, कुछ भी हो सकता है ना। तो एक प्रोग्राम होता था सवरती जाए जीवन की राहें, आंखें हैं अनमोल, पोस्ट बॉक्स 111, और बहुत सारी बातें लिख के भेजी हैं। अपना नाम बताइए, आपने नाम अपना नहीं लिखा है, बाकी सारी बातें लिख दी हैं। देखिए कुछ इसमें आपने जो नाम लिया है ना, ये स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स हैं, ये हमारे हाथ में नहीं होते, ये बन के आते हैं और जब उनका समय हो जाता है तो बंद हो जाते हैं। इनकी और सीरीज बनेगी तो आगे आपको सुनने को मिलेगा, तो फिर जुड़े रहिए हमारे प्रोग्राम, हमारे चैनल रेनबो के संग। आपके केंद्र और आपके आपसे तनिक भी शिकायत है उसकी गुंजाइश भी नहीं है, अरे वाह, दिल खुश कर दिया आपने। राहुल सिंह लिख रहे हैं बिजनौर से, आपके यहां से प्रसारित सभी प्रोग्राम काबिले तारीफ हैं, मनोरंजन के साथ साथ स्वास्थ्य, शिक्षा और भी महत्वपूर्ण विषयों पर कार्यक्रम को प्रसारित किया जाता है। थैंक यू राहुल जी, आपकी बातें सुन के हमारे अंदर फिर से ऊर्जा आ गई है, मुझे लगता है मुझे चाय नहीं पीनी पड़ेगी, मैं वैसे ही स्फूर्ति से भर गया हूं। वैसे भी ये चाय का टाइम थोड़ा है, ये तो खाना खाने का टाइम है, लंच टाइम है, और अधिकतर महिलाएं होती हैं जो इस में काम में लगी रहती हैं, ज़्यादातर किचन में, और ऑल द लेडीज, ऑल द आंटीज, सब के लिए ये गाना थोड़ी देर के लिए ये सुनते हैं बिंदास बोल में।

देखिए आपसे बातें करते हुए समय का पता ही नहीं लगता, समय यूं उड़ जाता है जैसे कि कोई चिड़िया। और आपके नाम हम यहाँ ज़रूर पढ़ेंगे। एक मेल हमारे पास आई है मोहम्मद सरफराज आलम जोगिहार दर्शना बिहार से, अररिया बिहार से लिखते हैं कि नियमित श्रोता है, लगभग 2 दशकों से कार्यक्रम सुनते आ रहे हैं और ये साथ में लेखक हैं, शायर। हमें पता है सर आपकी, हमने कई बार 2-4 कविताएँ 2-4 पंक्तियाँ हमने ज़रूर अपनी आवाज़ दी है, तो इसलिए हम भी बड़ा गर्व महसूस कर रहे हैं आपकी बात सुन के। आप चाहें तो हमें फीडबैक fmrainbow@gmail.com पर ईमेल कर सकते हैं अगले बिंदास बोल के लिए। एक बार फिर से हमारा एड्रेस नोट कीजिए, ये वन वर्ड है, feedback@fmrainbow@gmail.com। और एक दो लोगों के और ईमेल आए हैं, वो मैं पढ़ देता हूँ, नाम एटलीस्ट यहाँ पे ज़रूर लूँगा। विजय कुमार नामदेव, इनका मैं ईमेल पढ़ चुका हूँ, और बाकी मैं कुछ एक मैसेजेस यहाँ पर चलते चलते लेना चाहूँगा, क्योंकि अगले कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। सेंसस के ऊपर जो सीरीज चल रही है हमारी, उससे जुड़ा हुआ ये कार्यक्रम है। पिछले हफ्ते भी हमारे यहाँ पर बहुत सम्माननीय हैवी वेट हमारे गेस्ट आए थे, और आज भी हमारे स्टूडियो में थोड़ी देर के अंदर शालिनी सिंह के साथ रहेंगे। मैं उनके नाम आपको बता देता हूं और थोड़ी देर में आपके साथ वो हाज़िर भी हो जाएंगे। हमारे गेस्ट रहेंगे आज सलोनी राय, जो IAS हैं और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एंड प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर हैं डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ की। शैलेंद्र सिंह परिहार जी हैं, वो भी IAS हैं, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एंड प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर सेंट्रल नॉर्थ के। और साथ ही साथ विभा शर्मा हैं, जो डिप्टी डायरेक्टर हैं डायरेक्टरेट ऑफ सेंसस ऑपरेशंस के। तो बड़ा खास कार्यक्रम है, बस थोड़ी ही देर में शुरू होने वाला है। आप कहीं मत जाइएगा, रेनबो को सुनते रहिए। यहाँ पर रंजन को इजाज़त दीजिए इस कार्यक्रम से। एक दो नाम आपके जाते जाते यहाँ पर ज़रूर लूँगा। और राजा हिंदुस्तानी का गाना सुनना चाहते हैं तो मैंने आपसे जैसा कहा, अभी कार्यक्रम बिंदास बोल है, आज कार्यक्रम मेरा वाला सॉन्ग नहीं है। और चलते चलते दिनेश, सीमा, लक्ष्य, आपकी जाते हुए लास्ट मैसेज मैं ये कहूँगा, आपने हमारी प्रेजेंटेशन की यहाँ तारीफ की है, थैंक यू सो मच। कुछ एक नाम यहाँ पे आपने लिए हैं, चंद्रानी मुखर्जी, सुजाता रथ, प्रियंका मामगीन, वीर दमन, RJ गोपाल और बाकी सभी हमारे RJ जिनकी आप तारीफ कर रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रंजन कहता है टेक केयर, गुड बाय, आपसे होगी फिर से मुलाकात इन्हीं एयरवेव्स पर। जुड़े रहे हमारे साथ 2400 घंटे आकाशवाणी रेनबो पर।

0: आकाशवाणी
1: नमस्कार, जय हिंद। आशियाना में है आपका स्वागत आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। यूं तो हम सभी अपने अपने आशियानों में रहते हैं, लेकिन एक साझा आशियाना हम सबका है जिसे भारत देश कहते हैं। और उस भारत देश में रहने वाले भारतवासियों यानी जन जन

0: और इसके अलावा हमारे साथ हैं शैलेंद्र सिंह परिहार, आईएएस, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एंड प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर सेंट्रल नॉर्थ। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू
0: जी। और इसके अलावा हमारे साथ हैं विभा शर्मा, आप हैं डेप्यूटी डायरेक्टर, डायरेक्टरेट ऑफ सेंसस ऑपरेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जी। तो सेंसस की बात करें, उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगी कि कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आकर?
2: बहुत अच्छा लग रहा है। और जैसा कि क्योंकि कल से हमारा फील्ड सर्वे स्टार्ट हो जाएगा पहले चरण का सेंसस के, तो अच्छा है कि आज हम इंटरेक्ट कर पाएंगे और आपके इस प्रोग्राम के माध्यम से जागरूकता फैल पाएंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल। आपको कुछ कहना है, बताएं आप।
1: हमारा उद्देश्य यह है कि लोगों की इसमें भागीदारी ज्यादा से ज्यादा हो। जैसा कि अभी आपको पता है कि 1 मई से 15 मई तक सेल्फ एन्यूमरेशन का हमारा ये कार्यकाल चल रहा है, आज इसका लास्ट डे है। तो लोगों से मेरी अपील ये रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा लोग सेल्फ एन्यूमरेशन में पार्टिसिपेट करें, और जब हमारे सेंसस ऑफिसर कल से लोगों के घरों में विजिट करें तो उनका स्वागत करें और जो जानकारी उनसे मांगी जा रही है वो सहर्ष उनको प्रदान करें।
0: बिल्कुल, स्वगणना के लिए तैयार है आपका कहना है। बिल्कुल। आपसे सबसे पहला जो सवाल है मेरा वो ये होने वाला है कि पिछली जनगणना और अब में क्या कुछ खास नया है, क्या बदलाव आए हैं उसमें?
2: देखिए, एक तो जैसा अभी हम कह रहे हैं कि पहला सेंसस है जो कि पूरी तरीके से डिजिटल मोड में होगा
0: जी,
2: जिसमें हमारा प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक हम मॉनिटरिंग, ट्रेनिंग्स और सारी चीजें, और अब जो फाइनल हमारा स्टेप है डेटा कलेक्शन, वो भी थ्रू डिजिटल मोड में होगा। तो उसकी वजह से एक तो ये है कि डेटा में ट्रांसपेरेंसी और डेटा जो हमारा डिसेमिनेशन की जल्दी हम डेटा पब्लिश कर पाएंगे। दूसरी चीज है, पहली बार आएगा जो स्वगणना वाला, जो सर ने अभी बताया कि नागरिक खुद ही अपना डेटा फिल कर सकते हैं, तो ये चीज पहली बार इंट्रोड्यूस हुई है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और ये बहुत अच्छी बात है। आप क्या कहेंगे इस बारे में विभा जी?
3: नमस्कार, मैं सलोनी, प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ। हमारा लोगों से अभी सबसे पहले हमारी यही अपील है कि कल से जो हमारी सेंसस की एन्यूमरेशन की टीम्स फील्ड पे उतरने वाली हैं, तो सभी लोग इसमें अपना पूरी तरह से कोऑपरेशन दें और अपना डेटा जो प्रोवाइड कराते हैं वो एक्यूरेट डेटा प्रोवाइड करें। इसमें लोगों को जानकारी देने के लिए हम कुछ चीज़ें बताना चाहेंगे, जैसे कि हमारी जो टीम्स कल से घर घर विजिट करें। कई लोगों को ये डाउट होता है कि हम अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन इन टीम्स को प्रोवाइड कराएं या नहीं, मगर ये जो डेटा है ये पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा। हमारी जो टीम्स हैं उनका, सभी टीम्स को आईडी कार्ड्स होंगे, आईडी कार्ड्स पे क्यूआर कोड होंगे, आप उन टीम्स की ऑथेंटिसिटी खुद भी वेरीफाई कर सकते हैं। और जैसा कि पहले के दो स्पीकर्स ने बताया कि जो भी इन्फॉर्मेशन है, इस बार एक नया एक पहल की गई है जिसमें आप सेल्फ एन्यूमरेशन भी कर सकते थे जो कि 1 मई से 15 मई तक है। उसमें ये फायदा है कि एक्यूरेसी ऑफ इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा अहम रोल प्ले करती है।
0: जी बिल्कुल, और इससे जुड़े बहुत सारे सवाल हैं, इतने सारे सवाल हैं शायद समय हमारे पास कम पड़े। मैं आपकी तरफ आ रही हूँ शैलेंद्र जी, आप बताएं कि कितने फेजेस इसमें होने वाले? सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कितना समय लगेगा वो जानना चाहेंगे लोग इसमें।
1: सबसे पहले तो फर्स्ट फेज हमारा सेल्फ एन्यूमरेशन का था जो 1 मई से 15 मई तक का था, आज इसकी समाप्ति है। इसके बाद हाउस टू हाउस हमारी टीम जाएगी, तो ये 16 मई से 14 जून तक ये हाउस लिस्टिंग का फेज चलेगा
0: जी।
1: इसके बाद फिर 2027 में, फिर जनवरी फरवरी में आएगा जिसमें हम पर्सन टू पर्सन काउंटिंग करेंगे और इसको फाइनल कंक्लूजन तक ले जाएंगे
0: जी। ये बात तो सही है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही चलेगा क्या, या सिर्फ ऑनलाइन ही चलेगा?
1: ऑनलाइन तो अभी तक सेल्फ एन्यूमरेशन जिसमें आप 70% अपनी इन्फॉर्मेशन खुद से भर सकते हैं, फिर हमारे एन्यूमरेटर्स घर घर जाएंगे और जो बची हुई इन्फॉर्मेशन है उनसे लेकर उसमें फिल करेंगे
0: जी।
1: तो ऑनलाइन ये जैसा मैडम ने अभी बताया कि ये फर्स्ट टाइम है जिसमें फुल्ली डिजिटल हो रहा है, और ये इंडिया की नहीं वर्ल्ड की सबसे बड़ी एक्सरसाइज है जो शायद कभी नहीं और कहीं नहीं होती है, जिसमें एवरी पर्सन इन्वॉल्व है। और सबसे बड़ा फायदा इसमें यह है कि हमारे लोग इस बार टेक्नोलॉजी का पूरा यूज किया जा रहा है, और जैसे आप लोगों को याद होगा जैसे 2011 में पहले जो सेंसस हो रही थी या उसके पहले जो सेंसस हुई है, आजादी के बाद से अब तक 8 बार सेंसस हो चुकी है और ये 8वीं 9वीं सेंसस होगी। इसी तरीके से जितनी भी सेंसस होती है जिसमें बहुत सारा जो है तो हार्ड कॉपी लेके जाते थे लोग, हमारे इन्वर्टर्स के लिए बड़ी प्रॉब्लम्स रहती थी, इस बार वे वेल इक्विप्ड हैं और लोगों का पार्टिसिपेशन भी ज्यादा है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये जानना चाहूंगी कि इतने सारे जो प्रोसीजर होगा उसमें ऑफलाइन भी होगा ऑनलाइन भी होगा, तो उसमें आप ट्रैक कैसे रख पाएंगे?
1: ऑफलाइन नहीं होगा, सारी चीजें इसमें जो है तो ऑनलाइन ही होंगी, डिजिटल फॉर्म।

0: में ही होंगी
1: जी।
0: तो ऑफलाइन का इसमें वो नहीं है कि मैन्युअली हम प्रेजेंट होंगे वहाँ पर।
1: अच्छा ओके।
0: हाउस टू हाउस सर्वे करने के लिए जैसे मैं अभी आपके स्टूडियो में आया तो आप यहाँ पर हैं, तो मैं आपसे पूछूंगा कि आपके पास माइक है, टीवी है, कंप्यूटर है, घर में एसी है, कूलर है, कार है, ये सारी चीजें उसमें फिल करनी है।
1: यानी कि सारी चीजें डिजिटली ही
0: ऑपरेट वो हमारे इस मोबाइल के माध्यम से हमारे ऑफिसर आपसे पूछेंगे इन्फॉर्मेशन और वही भरेंगे, जो आप बताएंगे वही भरेंगे
1: जी। पब्लिक भी डेटा ट्रैक कर सकती है, सलोनी जी आप बताएं।
2: पब्लिक अपना जो इन्फॉर्मेशन भर रही है, जैसा कि सेल्फ एन्यूमरेशन में 70% तक इन्फॉर्मेशन वो खुद ही भरते हैं तो वो उनको पता है, और जो बाकी इन्फॉर्मेशन भी है वो भी वो खुद व्यू कर सकते हैं। उसके अलावा जैसा आपने पूछा, हमें भी डिस्ट्रिक्ट लेवल के और चार्ज ऑफिसर्स लेवल के डैशबोर्ड का एक्सेस प्रोवाइड कराया गया है, जिसमें हम मॉनिटर करते हैं कि जो हमारे एन्यूमरेटर्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं, वो कितने उन्होंने घर कवर किए, कितने हाउसेस को उन्होंने कवर किया मैन्युअली, कितनी जगह पे गए, वो सब ऑनलाइन हम मॉनिटर कर सकते हैं। ये एक फर्स्ट टाइम इस लेवल का ये एक्टिविटी की जा रही है कि ऑनलाइन माध्यम से हम इसको मॉनिटर करेंगे।
1: बिल्कुल, देखिए बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन मैं अपने लिसनर्स से भी बीच में कहना चाहूंगी कि आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि इन्हीं सारी चर्चाओं के बीच में हम आपसे एक छोटा सा सवाल करेंगे जिसका आपको जवाब देना होगा, और जो जवाब देगा उसका नाम यहाँ पर हम रेडियो पर अनाउंस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, और अभी बहुत सारी बातें बाकी हैं, लेकिन छोटा सा एक म्यूजिकल ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद फिर से आते हैं।

0: बिल्कुल, लक्ष्य को हर हाल में पाना है क्योंकि हमें जो जनगणना का अभियान है उसे सफल बनाना है। कहाँ आशियाना में बात कर रहे हैं हम आकाशवाणी ग्रीन बेट 102.6 पर कि जो जनगणना होने वाली है, जो जिसकी प्रक्रिया चालू हो चुकी है 2027 की, उसको लेकर चर्चा कर रहे हैं। और हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान तीन हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत ही खास मेहमान हैं। आप हैं सलोनी राय, IAS, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर, और साथ में हैं डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ से हैं आप। और इसके अलावा शैलेंद्र सिंह परिहार हैं हमारे साथ, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल नॉर्थ। और इसके अलावा हमारे साथ हैं विभा शर्मा, डिप्टी डायरेक्टर, डायरेक्टरेट ऑफ सेंसस ऑपरेशंस। आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से, आप सभी का, लिसनर्स का भी। और अब तक हमने बात करी कि क्या कुछ सेंसस के फेजेस हैं और इसमें क्या क्या हम किस तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं दिल्ली की, क्योंकि हम दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो लोग हैं वो कौन लोग इसमें इंक्लूडेड हैं और कौन लोग इंक्लूडेड नहीं हैं? जी
1: हाँ, जितने भी लोग दिल्ली में रह रहे हैं, चाहे वो किराए पर हों, क्योंकि दिल्ली में बहुत ज़्यादा माइग्रेंट पॉपुलेशन भी है, तो जो लोग भी यहाँ रह रहे हैं वो सभी को करना है। सिर्फ किन्हें नहीं करना है, जो कि कैजुअल विजिटर्स हैं, कोई घूमने आया हुआ है, कोई मेहमान किसी के घर पर आया हुआ है
0: जी।
1: या वो लोग जिन जो कि बाहर, मतलब अगर फॉरेनर्स यहाँ रह रहे हैं उन्हें इंक्लूड करना है, लेकिन हमारे जिनको इम्यूनिटी प्राप्त, जो कि हमारे एम्बेसी में, बाहर के जो एम्बेसीज में काम कर रहे हैं, जो डिप्लोमेट्स हैं, सिर्फ उनको काउंट नहीं करते हैं, कैजुअल विजिटर्स एंड डिप्लोमेट्स, उसके अलावा सभी लोग काउंट होते हैं
0: जी। और जो बाहर से लोग यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं या जो दिल्ली में है और बाहर ट्रैवल करने के लिए जा रहे हैं, उनका
1: जो घूमने के लिए जाते हैं, सिर्फ उनको जिस जगह पे के वो मूल निवासी है, मतलब रहते हैं नॉर्मली, वहीं पर काउंट करना है। अगर दिल्ली का कोई पर्सन बाहर घूमने गया हुआ है अभी इस टाइम पर, तो उसका जहाँ घर है दिल्ली में वहीं काउंट होगा।
0: जी जी, ठीक ठीक है। आप आपकी तरफ आते हैं शैलेंद्र जी, आप बताएं कि जो ये, माफ कीजिएगा थोड़ा सा, हमारा जो सेंसस का सारा प्रोग्राम है वो कितना समय लेता है, शुरू से लेके आखिर तक कितने दिनों की प्रक्रिया है ये?
2: ये काफ़ी टीडियस एक्सरसाइज है, और इसमें हम लोग सबसे पहले ये इंश्योर करते हैं कि हमारी पूरी मशीनरी पूरी तरीके से तैयार हो जाए, ट्रेनिंग हो जाए, सबको साथ में लेकर चलें, पब्लिक में भी अवेयरनेस लगे। लगभग इसमें एक साल का समय लगता है, और पहले की भी जो हुई हैं उनमें एक एक साल में इस तरीके से हुई हैं। हमारे यहाँ जैसे ऑल इंडिया एक्सरसाइज एक साथ होती है, तो सबसे पहले हम लोगों ने इस बार दो फेजेज में किया है। फर्स्ट फेज में, जिसमें हम लोग अभी बात कर रहे हैं, इसमें हाउस लिस्टिंग और हाउस का इन्यूमरेशन चल रहा है। हर घर में हमारी टीम जाएगी। जैसा कि अभी आपने पूछा कि इसमें कौन इंक्लूड है, तो सब कोई इंक्लूड है, ऑल द बिल्डिंग्स इंक्लूड हैं इसमें
0: जी।
2: जिसमें हम लोग अभी बात कर रहे हैं, ये बिल्डिंग भी इंक्लूडेड है। बस जैसे कि मैडम ने बताया, फॉरेन डिप्लोमेट्स और जो कैजुअल विजिटर्स हैं, जैसे घूमने टहलने के लिए लोग जाते हैं, वो लोग काउंट नहीं होंगे, बाकी सारे के सारे लोग इसमें काउंट होंगे। और ये ऑलमोस्ट पूरी एक साल की प्रक्रिया कह सकते हैं हम लोग।
0: दो फेजेस में जो हमारा अलग अलग चलता है ये प्रोसीजर, मैं आपके पास आना चाहूंगी सलोनी जी, कि एक होता है हमारा हाउसिंग और हाउस लिस्टिंग को लेकर, और दूसरा होता है हमारा काउंटिंग को लेकर, उसके लिए कुछ कहना चाहिए आप?
3: जी, ये दो फेजेस में ये प्रक्रिया होगी जनगणना की, जिसमें पहले फेज जो अभी कल से हमारे एन्यूमरेटर्स की टीम आएगी, वो चलेगा 16 मई से लेकर 14 जून तक हमारा पहला फेज रहेगा, जहाँ पे हाउस होल्ड लेवल का डेटा कलेक्ट किया जाएगा। अगला फेज जो होगा, जो कि फरवरी 2027 में अप्रॉक्सीमेटली शुरू होगा, उसमें एक पर्सन लेवल तक, एक ह्यूमन लेवल तक वहाँ पे काउंट किया जाएगा, जिसमें कि उनकी इनकम और जो भी एक पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो तब हमारी सेकंड फेज में कलेक्ट होंगी। अभी एक हाउसहोल्ड लेवल कैरेक्टरिस्टिक्स इस फर्स्ट फेज में कलेक्ट होंगी
0: जी। और ये अगले साल 2027 तक, कब तक खत्म होने की आशा है इसकी?
3: जी, मार्च तक हमारा लगभग हमारा सेकंड फेज की डेटा कलेक्शन खत्म होगी, उसके बाद कंपाइलेशन एनालिसिस करके, तो ये लगभग हम मिड ऑफ 27 या 2027 तक हमारा ये सेंसस की जो रिजल्ट्स हैं वो तब तक आ जाएंगे
0: जी। पहले से बहुत बेहतर और बहुत आसान हो गया। मैं

0: के पास आना चाहूंगी विभा जी. यहाँ पर जो लोग दिल्ली या दिल्ली एनसीआर में आसपास में लोग रहते हैं, वो कई लोग रेंटल अकोमोडेशन में भी रहते हैं या पीजी में रहते हैं या हॉस्टल में रहते हैं, तो उनको किस तरह से काउंट किया जाएगा या काउंट किया नहीं जाएगा?
1: काउंट किया जाएगा, क्योंकि देखिए सेंसस का पर्पस जो है प्लानिंग के लिए है. गवर्नमेंट प्लानिंग कैसे करेगी कि कितने रिसोर्सेज यूज में आ रहे हैं, उसके लिए हमें कितने लोग वहां रह रहे हैं जो वहां के रिसोर्सेज यूज में लेंगे, वो सबकी होनी चाहिए गिनती. इसलिए हमारी रेंटेड पॉपुलेशन भी काउंट होगी, पीजी वाले भी काउंट होंगे, हॉस्टल वाले भी काउंट होंगे,
0: और इसमें वो भी काउंट होंगे जिनके पेरेंटल हाउस यहां से.
1: हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल
0: ठीक है.
1: सब लोग जो जहाँ रहते हैं, सामान्यतः जहाँ रह रहे हैं वहीं पर उनकी गिनती होती है सेंसस
0: जी. अब मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी शैलेंद्र जी, किस तरह के डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है इस सारे प्रोसीजर को कंप्लीट करने के लिए? मान लीजिए ऑनलाइन या ऑफलाइन, ऑफलाइन तो नहीं ही कर रहे हम, एक तरह से मान लेते हैं कि ऑनलाइन सारा फॉर्म फिल करने के बाद में जब आप विजिट करते हैं वहां पर, तो किस तरह के डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने?
2: सिटीजन्स के लिए किसी भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है.
0: अच्छा,
2: ये पूरी तरीके से कॉन्फिडेंशियल डेटा उनसे लिया जाता है
0: जी.
2: एज पर एक्ट के हिसाब से एम्पावर्ड है, जैसे आरटीआई के तहत भी कोई इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकता है. और सब लोगों को अपनी स्वेच्छा से अपनी इन्फॉर्मेशन बतानी होती है कि उनके घर की क्या पोजीशन है, उनका घर कच्चा है, पक्का है, घर में उनके गाड़ी है, नहीं है, टीवी है, एसी है, फ्रिज है, कूलर है, जो भी हमारे इस तरह के सवाल होते हैं उन सवालों का जवाब उसमें देना है. और किसी के साथ में कोई डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है
0: जी. बिल्कुल, मुझे लगता है इतनी माइन्यूट इन्फॉर्मेशन पहली बार ही ली जा रही है. ये टीवी, फ्रिज, कार, एसी, इस सब का क्या लाभ होने वाला, मैं जानना चाहती हूँ. पहले तो ऐसा नहीं हुआ था कभी भी.
3: देखिए, हमें ये समझना होगा कि सेंसस का जो ये डेटा कलेक्शन है, इट इज़ जस्ट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्लानिंग आवर स्ट्रैटेजीज इन द नियर फ्यूचर. और जो एसेट्स की इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है वो इस पर्सपेक्टिव से मांगी जा रही है कि हमारा लोगों का, फैमिलीज़ का इनकम लेवल क्या है, उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, उसको असेस करने के लिए मांगी जा रही है. तो इसीलिए ये इंफॉर्मेशन एक अहम रोल प्ले करती है कि अभी लोगों का इनकम लेवल क्या है, कितने लोग हमारे उनका कंजम्पशन पैटर्न क्या है, और कितने लोग पावर्टी लाइन में नीचे हैं, कितने लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, ये सब चीज़ें असेस करने के लिए एसेट्स की इन्फॉर्मेशन भी लोगों से सीख की जाएगी.
2: इसमें मैं चीज़ एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि जैसे हम विकसित भारत की परिकल्पना कर रहे हैं 2047 में, तो उसके लिए सारे डेटा हमारे पास आज की डेट में आ जाएंगे. जैसे ही हमारा सेंसस कंप्लीट होगा, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या पोजीशन है, सोशियो इकोनॉमिक क्या पोजीशन है लोगों की, उसके हिसाब से हम फर्दर प्लानिंग बना सकते हैं और जो गैप्स हैं उनको हम फिल कर सकते हैं. जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल है उज्ज्वला योजना का. सोशियो इकोनॉमिक सेंसस 2011 के डेटा लिए गए थे, उसके हिसाब से ये स्कीम बनी थी. और आज की डेट में हम सैचुरेशन लेवल पर पहुंच गए हैं कि इंडिया के हर घर में गैस कनेक्शन होगा. तो हम इसी को इस लेवल पर ले जाना चाहेंगे कि जब हमारा डेटा जितना एक्यूरेट होगा, सही होगा, सच्चा होगा, लोगों के पास क्या सुविधाएं हैं, क्या नहीं है, कहाँ रोड है, कहाँ ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं है, उसको हम लोग जो होते हैं इस डेटा को उतनी बेहतर प्लानिंग, उतना बेहतर एग्जीक्यूशन.
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने. लेकिन अभी जो है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का समय हो चला, और मैं अपने लिसनर्स से भी कहना चाहूंगी कि अगर आपके भी इस रिलेटेड कोई सवाल है 2027 की जनगणना को लेकर, तो आप हम तक पहुंचा सकते हैं 9868107070 पर, हमारा नंबर है. आप सुन रहे हैं आशानिया आशियाना, कार्यक्रम का नाम है हमारे, और 102.6 पर आप इसे सुन पा रहे हैं. इसके साथ साथ आप सुन रहे हैं हमें न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी. मैं हूँ आपके साथ शालिनी.
4: दादी दादी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त.
5: पता का चाय, गजब का स्वाद.

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: वेलकम बैक। यू आर ऑन आकाशवाणी रेनबो 102.6 विद मी शालिनी, और आप हमें सुन रहे हैं न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी, साथ में 102.6 हमारी फ्रीक्वेंसी है और कार्यक्रम है आशियाना। आशियाना में आज हम बात कर रहे हैं कि 2027 की जो जनगणना है उसमें क्या कुछ नया होने वाला है, किस तरह से आप इस पूरे प्रोसीजर को करेंगे पूरा, और क्या क्या आपके लिए सहूलियतें यहाँ पर दी गई हैं, उसे बताने के लिए हमारे साथ जो हमारे गेस्ट हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे खास मेहमान हैं यहाँ पर सलोनी राय हैं, आप हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ, और साथ में है शैलेंद्र सिंह परिहार, डेजिग्नेशन है इनके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर सेंट्रल नॉर्थ। विभा शर्मा है हमारे साथ में, डिप्टी डायरेक्टर डायरेक्टरेट ऑफ सेंसस ऑपरेशंस। आप तीनों का बहुत स्वागत एक बार फिर से, और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां आपने हमें दी हैं, और साथ साथ मैं अब आगे बढ़ रही हूं और जानना चाहती हूं आपसे कि जो डोर टू डोर हमारे जो एन्यूमरेटर्स जाएंगे उनकी पहचान, उनकी जो ऑथेंटिसिटी की पहचान कैसे करेंगे लोग, अचानक से कोई आ जाए घर पर तो कोई कैसे एंट्री देगा उन्हें?
1: आपकी बात एकदम सही है। इसके लिए हम लोगों ने अपने जितने भी सारे हमारे सेंसस से जुड़े हुए ऑफिसर्स हैं सबको हमने आइडेंटिटी कार्ड इशू किए हुए हैं और एक लेटर भी इशू किया है, सो दैट जिसके घर में जाएं वो लोग वो बताएं, अपनी पहचान बताएंगे और साथ में वो लेटर भी दिखाएंगे कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस की तरफ से हमारे चार्ज ऑफिसर्स के द्वारा इशू किया गया लेटर के साथ में आपके यहाँ पर आएंगे। इसके पहले हम लोगों ने एक और कोशिश की है कि जितने भी हमारे RWAs हैं उनके पदाधिकारियों के साथ में हमारे ऑफिसर्स की मीटिंग्स हो चुकी हैं, हम लोगों ने उनको मैसेजिंग भी कर दी है। इसी तरीके से पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं उनको भी जो है तो कर दिया है, एजुकेशन डिपार्टमेंट्स के सारे टीचर्स को भी हमने कन्वे कर दिया है, सो दैट नीचे तक मैसेज पहुंच जाए कि हमारी जब ऑफिसर्स आएंगे तो किस तरह का उनके पास आई कार्ड होगा और किस तरीके से जो है तो उनको इंटरटेन करना और मेन करना और देखना है। ये बात सही है कि अगर सेंसस ऑफिसर्स के चक्कर में अगर कोई ऐसा बंदा आ जाता है कि जो आपसे अनवांटेड इन्फॉर्मेशन मांगता है तो कतई शेयर ना करें, किसी भी तरह के डिजिटल फ्रॉड में या किसी भी तरीके से उसमें मत फंसें। एक्चुअल सेंसस ऑफिसर्स के पास आई कार्ड होगा, उसका जो है एक ऑफिसर्स का लेटर होगा, तभी उसको एंटरटेन करें।
0: और अगर मान लीजिए कोई फंस जाता है इस तरह से किसी साइबर फ्रॉड में डिजिटली, तो क्या इसके लिए प्रोसीजर है, फिर क्या कर सकते हैं?
1: हमारी टीम इसके लिए चाक चौबंद है, कंट्रोल रूम भी हमने स्थापित कर दिया है, हर डिस्ट्रिक्ट में एक कंट्रोल रूम है और उसके लिए हर वार्ड में भी हमारा एक कंट्रोल रूम है। पुलिस के साथ में, पुलिस स्टेशन के साथ में हमारा प्रॉपर टाइप है, कहीं पर भी अगर किसी भी तरह की किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, चाहे हमारे ऑफिसर्स को या सिटीजन को, हमारी टीम तुरंत उसको कैटर करेगी।
0: जी बिल्कुल, लेकिन मैं ऐसे जानना चाह रही हूँ कि इस कैटर करने के लिए वो आप तक पहुंचेंगे कैसे, क्या कॉन्टेक्ट करने का जरिया है?
1: कॉन्टेक्ट डिटेल्स हमने RWAs को जो है तो भेजे हुए हैं, RWAs के साथ हम लोगों की मीटिंग्स हो चुकी हैं और हमारे ऑफिसर्स जो एन्यूमरेटर्स हैं उन RWAs के पदाधिकारियों के संपर्क में हैं।
2: इसमें मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी कि लोगों को ये हम अवेयरनेस देना चाहेंगे कि किसी भी तरह का उनको ऐसा कोई भी इंस्टेंस सामने आता है तो वो अपने कंसर्न सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट के ऑफिस में या कंसर्न DM ऑफिस में, कंट्रोल रूम्स एक्टिवेटेड हैं, वहाँ जाके किसी भी तरह की सेंसस रिलेटेड उनको कोई कंप्लेंट करनी हो तो वो ज़रूर हमारे ऑफिस उनके लिए हर वक्त खुले हैं।
0: जी बिल्कुल।
3: हाँ, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि इस बार जो ID कार्ड दिए गए हैं उनमें एक QR कोड भी है जिसको कि रिस्पोंडेंट, मतलब जो सिटीजन है, वो स्कैन करेंगे तो जो आपके पास पर्सन आए उसकी इन्फॉर्मेशन, हमारे पोर्टल का लिंक खुल जाएगा और वहाँ पर भी उनका नाम और डिटेल्स आ जाएंगे तो वेरीफाई कर सकते हैं कि ये सेंसस से ही आए हैं।
0: ग्रेट। लेकिन जो लोग डिजिटली बहुत ज़्यादा साउंड नहीं है उनका क्या?
3: हाँ, वही, उसी के लिए मैडम और सर ने बताया कि फिर वो जो कंसर्न, मतलब जैसे जो नॉर्मल प्रोसीजर है, अगर फ्रॉड हो जाता है कुछ SDM के नोटिस में लाएं और कंप्लेंट करें।
0: ठीक है, चलिए अब हमारे लिसनर्स का सवाल ले लेते हैं। हमारे पास पहला मैसेज आया है इनका, सुधीर सिंह खुतुबगढ़ से इन्होंने हमें मैसेज किया है, कह रहे नमस्कार, और कहते हैं कि मैं जो है वो सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे जो हैं वो हरियाणा के हैं और मैं रह रहा दिल्ली में हूँ, तो मेरे लिए क्या सही होगा?
1: उनकी सेंसस होगी, उसमें किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी।
0: अच्छा, ठीक है, तो इसी तरह से अगर आपके भी कोई सवाल हैं तो आप हम तक पहुंचा सकते हैं 9868107070 पर। आप सुन रहे हैं आशियाना 102.6 पर। मैं हूं आपके साथ शालिनी और हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़े हुए हैं आज, जो हमारे साथ चर्चा कर रहे हैं 2027 की जनगणना को लेकर। एक छोटे से ब्रेक में जाते हैं, उसके बाद जल्द हाजिर होते हैं और जानेंगे हम सेंसस को लेकर बहुत सी और भी बातें।

0: ये देश है आपका, हमारा, हम सबका, और इस देश को आगे बढ़ाने के लिए ही हम जनगणना करते हैं ताकि विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जा सके, है कि नहीं। मैं हूँ आपके साथ शालिनी और आप सुन रहे हैं आशियाना 102.6 पर। बात हो रही है आज जनगणना 2027 की, सेंसस 2027 की, और इस पर जानकारी के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान है, तीन खास मेहमान जुड़े हैं। सलोनी राय है हमारे साथ, आप हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर। साथ में है शैलेंद्र सिंह परिहार, आप हैं IAS और साथ में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल नॉर्थ। और इसके अलावा हमारे साथ हैं तीसरे मेहमान विभा शर्मा, डेप्यूटी डायरेक्टर डायरेक्टरेट ऑफ सेंसस ऑपरेशंस। बहुत स्वागत एक बार फिर से। चलिए शुरुआत हो चुकी है, बहुत अच्छी हुई है और उसको और आगे बढ़ाते हैं। ये बताएं हमें कि क्या सेल्फ इनोमरेशन जो है वो कंपल्सरी है, स्वगणना जिसे कहते हैं?
1: सेल्फ एन्यूमरेशन की जो प्रक्रिया है वो कंपलसरी नहीं है, इट इज रेकमेंडेड, क्योंकि जब कोई भी इंसान सेल्फ एन्यूमरेशन में अपना डेटा भरता है तो वो अपनी कन्वीनियंस में और एक्यूरेसी में, उसमें डेफिनेटली एक लोगों की इंफॉर्मेशन जो भर रही हैं वो एक्यूरेट रहती है, इसलिए हम एंकरेज कर रहे हैं लोगों को कि वो सेल्फ एन्यूमरेशन में अपना डेटा भरें। और जब भी एन्यूमरेटर और सुपरवाइजर्स घर आएंगे आपका डेटा कलेक्ट करने के लिए, सबसे पहले वो आपसे यही पूछेंगे कि अपना सेल्फ एन्यूमरेशन का आईडी हमें बताइए। तो वो अगर आईडी उन्होंने भरा होगा तो आईडी जनरेट हुआ होगा, तो वो इन्फॉर्मेशन वो स्वैच्छिक तरह से एन्यूमरेटर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं, और उससे हमारा टाइम और एफर्ट भी कम होता है और एक्यूरेसी भी उसमें बढ़ती है।
0: और मान लीजिए किसी के पास आईडी मिस हो गई है या किसी भी वजह से नहीं है, फिर वो क्या कर सकते हैं? क्या वो दोबारा से पूरी प्रक्रिया होगी?
2: नहीं, वो जिस तरीके से एन्यूमरेटर उन घरों में जा रहे हैं जिन्होंने सेल्फ एन्यूमरेशन किया ही नहीं है, तो ये भी उसी तरीके से काउंट होगा और पूरा डेटा एन्यूमरेटर उनसे फ्रेश भरेगा।
0: ठीक है, तो ये अगर मान लीजिए कोई खुद से नहीं फिल कर पा रहा है तो क्या जो हमारे ऑफिसर्स जाते हैं वो इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम देते हैं फिर से?
2: नहीं नहीं, सेल्फ एन्यूमरेशन का पीरियड तो आज आखिरी दिन है, कल से तो फील्ड ऑपरेशन शुरू हो जाएगा, तो अभी सेल्फ एन्यूमरेशन जिनको करना है वो आज तक कर सकते हैं। आज कर सकते हैं।
0: आज कितने बजे तक का समय है हमारे पास?
2: आज रात तक का समय है और कल से एन्यूमरेटर जाएंगे, तो जिन्होंने सेल्फ एन्यूमरेशन कर लिया है वो सिर्फ अपना आईडी शेयर कर सकते हैं एन्यूमरेटर के आने पर, जिन्होंने नहीं किया है उनका पूरा डेटा एन्यूमरेटर फिल करेंगे, लेकिन एन्यूमरेटर हर घर में जाएंगे ही।
0: ठीक है, और जो सेल्फ एन्यूमरेशन है शैलेंद्र जी, वो करने के बाद क्या फर्स्ट प्लेस कंप्लीट हो जाता है? ऐसा लोगों का सवाल आता है, क्या इतना कर लिया तो काफी है, उसके बाद पॉज कितना लेना है फिर?
3: नहीं, सेल्फ एन्यूमरेशन इसमें क्या है, ये पहली बार ऐसी भागीदारी है जिसमें जनता सीधे सपोर्ट कर रही है, जैसे आपकी जनगणना तो आप इसमें सपोर्ट कर रहे हैं। सेल्फ एन्यूमरेशन का पर्पज ये है कि आप हमारा काम कम कर रहे हैं और साथ में इस जनगणना में भागीदारी भी कर रहे हैं, तो लगभग 70% इन्फॉर्मेशन पब्लिक खुद अपनी उसमें भर देगी अपने पोर्टल के से जुड़कर, और उसका एक 11 डिजिट का जो है तो एक कोड मिलेगा, उस कोड को अपने पास सिक्योर रखेगी। जब हमारे एन्यूमरेटर ऑफिसर्स जाएंगे आपके घर में, तो जब पूछेंगे आप अपना वो 11 डिजिट का नंबर बताएंगे, वो जब डालेंगे तो वो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पोर्टल पर भी आ जाएगी आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है। बाकी बची हुई 30% इन्फॉर्मेशन आपसे पूछकर हमारे ऑफिसर वहीं पर भर देंगे आपके घर में ही, और वो कंप्लीट हो जाएगी।
0: जी, बहुत शुक्रिया। आप कुछ और कहना चाह रहे हैं?
3: मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये केवल सेल्फ एन्यूमरेशन से पूरी प्रक्रिया कंप्लीट नहीं होगी, पूरी प्रक्रिया तभी कंप्लीट होगी जब हमारे ऑफिसर आपके घर जाएंगे, लेकिन 70% की सहभागिता किसी भी नागरिक के लिए सेंसस अभियान से जुड़ना एक बहुत बड़ा कदम है।
0: जी, बहुत बड़ा कदम है, और इस बहुत बड़े कदम को बढ़ाते बढ़ाते ना लोगों की सांस फूलने लगती है इतनी गर्मी में। आपको भी ख्याल रखना है, अपने लिसनर से कहना चाहती हूँ मैं कि जो ऑफिसर्स आपके घर में आते हैं इतने दूर से, आपके ख्याल को लेकर वो आते हैं, आपके विकास को लेकर आते हैं आपके पास, आप उनसे इतना तो कर ही सकते हैं कि थोड़ा सा चाय पानी के लिए, चाय पानी से मतलब आप कुछ दूसरा मत लगाइएगा, मेरा मतलब है सिर्फ पानी, या कुछ उनको गर्मी में राहत देने के लिए कुछ ठंडा कुछ उनको पेश कर दें, उनको उतना ही अच्छा लगता है। आप किसी घर आए मेहमान को कैसे उनका स्वागत करते हैं, बस उसी तरह से उनका भी स्वागत करें, तो ये सारा जो प्रोसीजर है वो बहुत आसान हो जाएगा और उन्हें भी खुशी मिलेगी। चलिए, अब हमारे जो लिसनर्स हैं उनसे मैं ये कहना चाहूंगी कि आपको मैंने कहा था कि आपके लिए एक सवाल होगा, तो सवाल ये है कि हमारे जो जनगणना के फेजेस हैं, जो दो फेजेस की हमने बात करी है, वो कौन से हैं? अगर आपने ध्यान से शुरू से शो सुना है तो आपको जरूर पता होगा। नंबर नोट कर लीजिए, 9868107070, इस पे आपको मैसेज करके अपना आंसर देना है। फटाफट से मैसेज कीजिए, हम आगे बढ़ते हैं शो में, छोटा सा एक यहाँ पर ब्रेक लेते हैं और फिर से सवाल जवाब का दौर जो है वो चालू हो जाएगा। ठीक है, आशाना सुन रहे हैं आप 102.6 पर आकाशवाणी रेनबो विद मी शालिनी।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर आपके साथ हूं मैं शालिनी और आप सुन रहे हैं आशियाना। आशियाना में आज बात हो रही है सेंसस 2027 यानी कि जनगणना 2027 की, जिसकी शुरुआत हो चुकी है और आज सेल्फ एन्यूमरेशन का आखिरी दिन है। आपके पास बहुत कम समय बचा है, फटाफट से उसे कर लीजिए। हमारे साथ तीन मेहमान जुड़ गए हैं, खास मेहमान है हमारे साथ आप सलोनी राय IAS और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ। शैलेंद्र सिंह परिहार है हमारे साथ, आप हैं IAS डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल नॉर्थ, और साथ में हैं विभास शर्मा डिप्टी डायरेक्टर डायरेक्टरेट ऑफ सेंसस ऑपरेशंस। वेलकम बैक अगेन लिसनर्स, आपका भी और हमारे जो गेस्ट हैं उनका भी। अब तक हमने बात की सारी कि किस तरह से दिल्ली में हमको लोगों को रेंटेड अकोमोडेशन और बहुत तरह की चीज़ें हमने बात की, और हमारे साथ जो लिसनर्स भी जुड़े हैं, उससे पहले कि आगे बढ़े मैं अपने सवाल करूं आपसे, मैं लिसनर का एक सवाल ले लेती हूं आपसे। ये है संजय बोल रहे हैं मेरठ से, कहते हैं कि नमस्कार मजिस्ट्रेट साहब, मेरा एक सवाल है कि 2011 की जनगणना में इनका शायद किसी वजह से नाम नहीं है, इनकी ये शिकायत है। कहते हैं कि इनका जो आयुष्मान कार्ड है वो भी नहीं बन सका है, कैसे इन्हें पता चलेगा कि जो मेरी जनगणना में इनका जो नाम है या नहीं है, ताकि दोबारा से गलती ना हो। बताएं आपसे चरित्र जी।
1: सबसे पहली चीज ये है कि मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा अभियान ये है कि एक भी हमारे यहाँ का नागरिक छूटना नहीं चाहिए, और हमारी ये जिम्मेदारी है, प्राइमरी जिम्मेदारी। हो सकता है किसी कारणवश कोई टेक्निकल इशू हो जिसकी वजह से इनको प्रॉब्लम हुई होगी। अब मुझे नहीं लगता है 2027 की जनगणना में कोई भी व्यक्ति छूटेगा। किसी स्कीम का पार्ट बनना नहीं पार्ट बनना एक अलग चीज़ हो सकती है, लेकिन कोई भी हमारे यहाँ से, चाहे वो छोटे से बच्चे को एक दिन पहले भी जन्म हुआ होगा, तब भी उसका इस जनगणना में भागीदारी अवश्य होगी।
0: जी बिल्कुल, तो मुझे लगता है आपको जो एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर मिल गया होगा। और लिसनर से मैं कहना चाहूंगी, अगर आपके कोई भी और सवाल है जनगणना से लेकर 2027 की, तो आप कर सकते हैं। कोई भी आपको परेशानी आ रही है आपके सेल्फ एन्यूमरेशन फॉर्म को फिल करते वक्त, तो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। फटाफट से हमें मैसेज करिए, 9868107070 है नंबर। आप सुन रहे हैं आशियाना, बात कर रहे हैं हम सेंसस 2027 की। जी, कितना जरूरी है सेंसस में पार्टिसिपेट करना, और क्या वजह है इतने बड़े लेवल पर इतनी माइन्यूट इन्फॉर्मेशन लेने की, मैं आपसे जानना चाहूंगी सलोनी जी, बताएं।
2: देखिए, सेंसस में पार्टिसिपेट करना एक बहुत ही जरूरी, एक अहम रोल प्ले करता है, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये रेगुलरली 10 साल के इंटरवल में, इस बार ये लगभग 16 साल के इंटरवल पे की जा रही है ये एंटायर एक्सरसाइज। और ये इन्फॉर्मेशन हमारी देश की प्लान स्ट्रैटेजीज पॉलिसीज बनाने के लिए एक बहुत बड़ा एक फंडामेंटल एक ग्राउंडिंग है, जिसके ऊपर हमारी सारी डिसीजन मेकिंग निर्भर करती है। और इसीलिए सेंसस की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना एक बहुत इम्पॉर्टेंट हमारी एक जिम्मेदारी है, और उसी से ही हम एक देश की एक प्लानिंग को एक सही दिशा में और एक सही पर्सपेक्टिव में हम लेके जा सकते हैं। इसीलिए बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करता है, और लोगों से हमारी अपील है, हम आज यहाँ आए भी इसीलिए हैं कि हम लोगों को अपने माध्यम से अपील कर पाएं कि वो इस सेंसस की प्रक्रिया में पूरी तरह से पार्टिसिपेट करें और अपना सेल्फ एन्यूमरेशन से अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दें, और जो कल से हमारी टीम्स घर घर आएंगी उनको अपना पूरी तरह से कोऑपरेशन दें।
0: जी, अधिकार चाहिए तो अपने कर्तव्यों का भी पालन करें। जी विभाजी, आप कुछ कहना चाहेंगे?
3: नहीं, जैसा कि मैम ने बोला कि अपना पूरी तरीके से कॉपरेट करें, और ये समझते हुए करें कि डेटा जितना एक्यूरेट होगा

0: उसमें हम सबकी भलाई है, तभी गवर्नमेंट अच्छे से पॉलिसी मेकिंग कर पाएगी प्रगति और विकास के लिए।
1: मैं इसमें और ऐड करना चाहूंगा, जैसे हम होली मनाते हैं, हमारे जो नेशनल फेस्टिवल्स हैं मनाते हैं 15 अगस्त 26 जनवरी, तो उसके लिए प्रिपरेशन करते हैं। उसी तरीके से अगर हमको विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करना है तो हमें इस जनगणना में सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए, तो इसको त्यौहार की तरह मनाना चाहिए। और ये फर्स्ट टाइम ऐसा होता है जिसमें इतनी व्यापक जानकारी इकट्ठी होती है, और शायद ये भी एक अपने आप में बड़ा उत्साह होना चाहिए कि कौन लोग हैं, कितने लोग हैं, कहाँ पर हैं, सबकी जानकारी एक साथ एक पोर्टल पर मिल सकती है।
2: जी, ये जानकारी सबके लिए अवेलेबल है, पब्लिक के लिए भी?
1: पब्लिक के लिए जब हम इसको लेके आएंगे तो इसमें हमारा जो है www.censusindia.government.in, इस पर जो है कोई भी एक्सेस कर सकता है।
2: कोई भी एक्सेस कर सकता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे थोड़ा सा इस बात का डर है कहीं इस इन्फॉर्मेशन का गलत इस्तेमाल ना हो, ये कैसे आश्वस्त?
1: ये हमारे जो सेंसस एक्ट 1948 है उसके तहत सारी इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है। आप RTI के तहत भी इस इन्फॉर्मेशन को नहीं ले सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन किसी और पर्पज के लिए यूज नहीं की जा सकती है। ये और किसी जो है तो कहीं पर जो है तो एज ए एविडेंस के रूप में इसकी मान्यता नहीं हो सकती है। तो ये केवल और केवल लोगों को भरोसा दिलाना जरूरी है या ये नॉलेज होना जरूरी है कि ये एक्ट के तहत ही जो है तो किया जाएगा और डेटा पूरी तरीके से कॉन्फिडेंशियल होगा, जो कहीं पर मिसयूज होने की संभावना जीरो है।
2: बिल्कुल। और अगर कोई जी बताएं,
0: इसमें हमारा जो डेटा पब्लिश होता है वो इंडिविजुअल लेवल पर नहीं होता है, इसलिए जो वेबसाइट पर या कहीं भी जो डेटा है तो उस तरीके से मिसयूज नहीं हो सकता है। डेटा हम लोग एग्रीगेट लेवल पर, कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, गांव लेवल पर, वार्ड लेवल पर, उस तरीके से पब्लिश होता है। और इंडिविजुअल डेटा ना पब्लिश होता है ना कहीं पर शेयर किया जाता है।
2: ये डेटा जो आप अगर मान लीजिए किसी को शेयर करते हैं तो वो कौन,
0: हम कंसर्न ऑफिसर से शेयर नहीं करते ये डेटा, इंडिविजुअल लेवल डेटा। जैसा सर ने बताया कि इवन एज एविडेंस भी हम कोर्ट में भी ये डेटा पेश नहीं करते हैं।
2: क्या बात है, तो आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप क्या कहेंगे सलोनी जी इस बारे में?
3: जैसा कि मेरे फेलो स्पीकर्स ने बताया, ये कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ डेटा इज अ प्राइमरी कंसर्न, और ये पूरी प्रक्रिया और पूरी ये जो प्लानिंग है इसी हिसाब से की गई है कि हम जो सिटीजन्स का सबसे प्राइमरी कंसर्न है विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ देयर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इट हैज़ बीन ड्यूली टेकन केयर ऑफ, एंड सिटीजन्स को बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है विद रिस्पेक्ट टू लीकिंग ऑफ एनी काइंड ऑफ अ पर्सनल इन्फॉर्मेशन। ये जो भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जा रही है वो बेझिझक अपने एन्यूमरेटर्स को बताएं और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दें।
2: जी, और बाकी तो आपको बताया गया है कि अगर किसी भी तरह की कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपके लिए बहुत सारी सुविधाएं पहले ही कर दी गई हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगी शैलेंद्र जी कि अगर इन सब के बावजूद भी कोई ऐसा है जो किसी भी वजह से, आलस की वजह से या उसको नहीं जाना है, तो क्या वो चलेगा कि अगर कोई पार्टिसिपेट नहीं करता है इस अभियान में, और क्या पेनल्टी है उसके लिए?
1: हाँ, पेनल्टी का प्रोविजन से भी आपकी बात सही है कि अगर कोई इसको किसी भी तरीके से इस प्रक्रिया में बाधा बनता है या निगेटिव उसके लिए करता है तो एक्ट में प्रोविजन है पेनल्टी का भी। इसमें 3 साल तक की सजा भी हो सकती है और साथ में ₹1,000 का जो है तो आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये कोई सिटीजन ये चाहे कि मैं अपनी जनगणना नहीं करवाऊंगा, ऐसा नहीं है, कंपलसरी है, ये हमें करना ही करना है। अगर कोई अपने घर में एक बार में नहीं मिलेगा तो हमारे ऑफिसर दूसरी बार जाएंगे, तीसरी बार जाएंगे, चौथी बार जाएंगे, जिस समय नहीं मिलता उस समय उनके पड़ोसियों से बात करेंगे या RWA के मेंबर से बात करेंगे। तो सारे नागरिकों से मेरी अपील यही है कि अगर इस दौरान वो बाहर रहते हैं तो अपने RWAs को, अपने पड़ोसियों को बताकर जाएं और हमारे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे के जाएं, सो दैट हमारे ऑफिसर आपसे कॉन्टैक्ट कर सकें और इस प्रक्रिया में भागीदारी आपको दिला सकें।
2: जी, बहुत शुक्रिया आपका। और अभी और भी बहुत सारी बातें बाकी हैं, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेंगे हम, उसके बाद जारी रखेंगे अपनी चर्चा को। आप सुन रहे हैं आशियाना, मैं हूँ आपके साथ शालिनी, और हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। आएंगे लौटकर फिर से यहाँ पर 102.6 पर। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो।
4: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी सी नजर में है जादू।
5: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
4: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
5: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
6: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: वेलकम बैक। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। मैं हूं आपके साथ शालिनी और आशियाना सुन रहे हैं आप। आज के इस हमारे शो में आज हम बात कर रहे हैं सेंसस 2027 यानी कि जनगणना 2027 की। वो सारी प्रक्रिया क्या है, कैसे आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और कितना आसान हो गया पहले से अब आपके लिए, ये सारी जानकारी आपको मुहैया करा रहे हैं। हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़े हुए हैं हमारे स्टूडियो में। सलोनी राय है हमारे साथ, IAS डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ, और साथ में है शैलेंद्र सिंह परिहार, IAS डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल नॉर्थ। इसके साथ है हमारे साथ विभा शर्मा, डिप्टी डायरेक्टर डायरेक्टरेट ऑफ सेंसस ऑपरेशन। चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। ये जो सवालों की प्रक्रिया है जो शुरू होगी, जो फॉर्म भरने में कितने सवाल होते हैं और किस तरह के सवाल किए जाते हैं, लोग अक्सर डरते हैं कि हमसे क्या पूछ लिया जाएगा, आप बताएं शैलेंद्र जी।
1: सवाल ऐसे होते हैं जिनको हम बखूबी देखते हैं और जानते हैं। वस्तु स्थिति हमारी आज की कंडीशन क्या है, जैसे उसमें टोटल 33 क्वेश्चंस होंगे
0: जी।
1: और वो सवाल होंगे जैसे आपका घर है तो आपका घर कैसा है, कच्चा है कि पक्का है
0: जी।
1: साथ में आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो यूज करते हैं वो क्या है, आपके घर में कोई गाड़ी है, साइकिल है, मोटरसाइकिल है, या आपकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, ये जनरली उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। साथ में आपके यहाँ टॉयलेट्स है या नहीं है, इसी तरीके से वाटर ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी है या नहीं है, इसी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या पोजीशन है, ये सारे सवाल इसलिए होते हैं कि इसी तरह के सवालों को इकट्ठा करके हम लोगों के गवर्नमेंट ये जान सके कि हमारे देश के नागरिकों की हालत किस तरह की है, कैसे लोगों के, और हम ऐसी कौन सी पॉलिसी और नीति बनाएं जो लंबे समय तक जो है तो हम उनको इस गरीबी की हालत से निजात दिलाकर एक अच्छी पोजीशन पर लेकर आ सके
0: जी। आपका क्या कहना है सलोनी जी इस बारे में, अगर मान लीजिए कोई इन्फॉर्मेशन सही ना दे, दो एसी घर में है और वो एक भी ना बताए या एसी की जगह कूलर बताए, क्या करेंगे आप उस केस में?
2: देखिए, सेंसस की प्रक्रिया में सबसे पहले तो हम ये अज्यूम करते हैं कि जो भी लोग हैं, सिटीजन्स हैं, वो सही इन्फॉर्मेशन देंगे। इसीलिए ये इंश्योर किया जाता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स या क्रॉस चेकिंग नहीं होता है इन्फॉर्मेशन का। मगर अगर सिटीजन्स गलत इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं तो एक्ट में उसके अगेंस्ट पीनल प्रोविजन्स भी हैं और फाइन भी लग सकता है और पेनल्टी भी लग सकती है अगर लोग गलत इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर रहे हैं। इसीलिए हम ये लोगों से अपील करना चाहेंगे कि वो जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो सही इन्फॉर्मेशन दें। इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन देने के लिए उन पे क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी हो सकती हैं।
0: जी बिल्कुल। विभा जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि किस तरह के रेजिडेंट, एक नॉर्मल रेजिडेंट सेंसस की अगर हम बात करें उस प्रक्रिया में, तो वो कैसे एक नॉर्मल रेजिडेंट काउंट होगा, वो पूरा प्रोसीजर क्या कंप्लीट कर लेंगे जिनको हम कह सकते हैं कि हाँ ये बिल्कुल सही सिटीजन है?
3: नहीं, देखिए, जनगणना में हम, जैसे कि मैंने पहले बताया, इवन अगर कोई बाहर का नागरिक भी यहाँ रह रहा है एक्सेप्ट फॉर डिप्लोमेट्स, हम उनको भी काउंट करेंगे
0: जी।
3: तो सामान्यतया जो जहाँ रह रहा है उसकी गिनती सेंसस में होती है, उसके लिए ना तो किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत है, हम लीगल इलीगल इस सब में कुछ भी सेंसस नहीं देखता है, जो जहाँ रह रहे हैं उसकी वहाँ पर गिनती की जाती है
0: जी। एक हमारे पास सवाल आया है हमारे लिसनर का, शैलेंद्र जी मैं आपसे जानना चाहूंगी। वो कह रहे हैं कि कर्मवीर नाम है इनका, ये जिला झज्जर हरियाणा से ये भेज रहे हैं। मैं कहते हैं कि सेल्फ एनुमरेशन फॉर्म अगर ये भर लेते हैं और जब ये वापस आते हैं अपने घर पर, उन्हें पता चलता है कि उनकी तो गणना पहले ही हो गई है, तो फिर क्या करेंगे वो? इट्स काइंड ऑफ फनी सिचुएशन, इजंट इट?
1: ऐसी सिचुएशन वैसे होनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर ऐसी होती है तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि क्या है, इसमें एक घर में कोई भी एक मेल या फीमेल, जिसको भी इस बात की जिम्मेदारी, जिसको जनरली जो घर के काम करते हैं वो एक जो है तो जिनको आप मालिक की हैसियत समझते हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं
0: जी।
1: अगर जज साहब हैं, अगर नहीं हैं उनके घर में या उनकी वाइफ हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन दे सकता है, और उन्होंने जो है तो वो शेयर नहीं किया है हमारे ऑफिसर से, तब भी उनकी काउंटिंग वही होगी जो हमारे एनुमरेटर ऑफिसर ने ही की है और उसको लॉक किया है,
0: क्योंकि डेटा वहां पर,
1: जब तक हमारे ऑफिसर उसको लॉक नहीं करेंगे तब तक वो काउंटिंग में नहीं आएंगे।
0: बिल्कुल, तो आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं, आप दो बार काउंट नहीं हो पाएंगे, डोंट वरी। आपके पास आती हूं विभा जी, आप बताएं कि जैसे आपने अभी बात करी शैलेंद्र जी की, ओनरशिप की बात करी उन्होंने, कि कौन काउंट होगा मेन ओनर के तौर पर, उन्होंने क्या सिलेक्ट करना चाहिए फॉर्म भरते वक्त?
3: आप ओनरशिप की बात कर रहे हैं, ओनरशिप

0: ऑफ हाउस,
1: हेड ऑफ द फैमिली,
0: मैं हेड ऑफ द फैमिली की भी बात करूँ, ओनरशिप की बात करूँ कि फॉर्म में क्या क्या और किस तरह से उनका
2: ओनरशिप. देखिए, एक उसमें सवाल है क्योंकि ये पहली जो मकान सूचीकरण फेस जो हमारा चल रहा है HLO हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन, उसमें एक सवाल है कि जिस घर की हम गणना करने जा रहे हैं, जिस सेंसस हाउस की, वो ओन्ड है या रेंटेड है. तो उस केस में और रेंटेड में भी दो चीजें हैं कि यहाँ पर तो किराए पर रह रहे हैं लेकिन उनका कहीं और पर घर है, तो उसके लिए अलग अलग कोड है. और ओनरशिप मतलब उस हाउस होल्ड में जितने मेंबर हैं उनमें से किसी का भी वो मकान हो सकता है. तो जरूरी नहीं है कि ओनरशिप स्टेटस में जिसको हम हेड ऑफ हाउस होल्ड बता रहे हैं उसी के नाम पर मकान हो. उस परिवार में 5 सदस्य हैं, किसी के नाम, किसी का भी वो ओन्ड हो सकता है.
0: बिल्कुल.
2: फिर दूसरी बात आती है हेड ऑफ हाउस होल्ड की, घर का मुखिया भी इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर एंड एज, कोई भी वो पर्सन जिसको कि वो परिवार के सदस्य मानते हैं कि ये हमारा सारे डिसीजन लेने में ये पर्सन है, उसका नाम हो सकता है.
0: जी, इससे पहले कि हम शो का जो समय है वो धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा है और अपने आखिरी चरण की ओर पहुंच रहा है, मैं अपने लिसनर को बता देना चाहूंगी कि हमने एक सवाल पूछा था कि जो हमारा जनगणना का जो फेज है वो कितने भागों में बटा हुआ है, क्या फेजेस हैं इसके. तो बहुत से आंसर्स तो आए हैं लेकिन ज्यादातर गलत आए हैं, तो मैं आपको सही आंसर बता देती हूँ. सही आंसर ये है कि दो फेजेस में बटा हुआ है ये हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस जिसे कहते हैं HLO, और इसके अलावा पॉपुलेशन एन्यूमरेशन जिसे PE कहते हैं, जनगणना यानी कि आपकी काउंटिंग जिसमें होगी. मैं ठीक कह रही हूँ?
2: बिल्कुल.
0: अगर मैंने कुछ गलत कहा है तो आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं.
2: नहीं जी, बिल्कुल
1: एकदम सही.
0: चलिए, तो आप ये बताइए मुझे शैलेंद्र जी कि ये जो सारा प्रोसीजर है इसका सर्वे सर्वा कौन है, कौन इसे कंडक्ट करता है?
1: बेसिकली सर्वे सर्वा इसमें भारत सरकार में एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ सेंसस, इसमें इसके रजिस्ट्रार जनरल हैं, कमिश्नर हैं
0: जी.
1: और वो फिर इसी तरीके से जैसे दिल्ली एक स्टेट है, यूटी है, यूपी कैपिटल सिटी, इसमें डायरेक्टर सेंसस इसके डायरेक्टर हैं और वो सारा इसको देखते हैं. सारे जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं उनके अंडर में जो है तो रखकर दिल्ली के सारे जो है तो हम लोग प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर्स होकर पूरे इसको देखते हैं. हमारे ऊपर जो है तो डिविजनल कमिश्नर हैं और इसके बाद फिर हमारे यहाँ पर ADM हैं, SDMs हैं और चार्ज ऑफिसर्स हैं. हम लोगों ने हर वार्ड में एक चार्ज ऑफिसर बनाए हुए हैं, असिस्टेंट चार्ज ऑफिसर्स हैं, उसके बाद फिर सुपरवाइजर्स हैं, फिर एनुमरेटर्स हैं, ये पूरी हमारी चेन है.
0: हमारी ड्यूटीज की बात आई है विभाजी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि स्नो बाउंड एरियाज जो हमारे हैं, जो लद्दाख हुआ, जम्मू कश्मीर हुआ, उत्तराखंड हुआ, हिमाचल हुआ, क्या यहाँ पर प्रक्रिया कुछ अलग है या सेम चलेगी?
2: प्रक्रिया सेम चलेगी, सिर्फ एक अंतर रहेगा जो PE फेज की, पॉपुलेशन इन्यूमरेशन फेज की आपने बात की कि वो फरवरी 2027 की जगह सितंबर 2026 में ही उन जगहों पर जो स्नो बाउंड एरिया है वहां पर हो जाएगा.
0: ठीक है, सलोनी जी आपके पास आना चाहूंगी मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये सारा प्रोसीजर जब कंप्लीट हो जाएगा, आई गेस फरवरी या मार्च तक आपने कहा कि ये कंप्लीट हो जाएगा
2: जी.
0: तो उसके बाद क्या कोई प्रूफ, कोई स्लिप, कुछ ऐसा हमें मिलेगा जिससे सिटीजन ये कह सकें कि अब हमने ये प्रोसीजर कंप्लीट कर लिया है, नाउ वी हैव डन इट, तो वी आर द पार्ट ऑफ इट?
3: नहीं, सिटीजन लेवल पे तो एज सच नहीं मिलेगा, मगर जब ये एन्यूमरेशन की प्रक्रिया ख़त्म हो जाएगी और जब डेटा क्योंकि अब सब ऑनलाइन कलेक्शन हो रहा है तो डेटा कंपाइल होगा, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन जो हमारी सेंसस की वेबसाइट है उस पे कंपाइलेशन के बाद जितना जल्दी होगा वो सेंसस की वेबसाइट पे पब्लिश होगा, गवर्नमेंट की वेबसाइट पे, और सिटीजन्स वहाँ से अपना जो भी एग्रीगेट लेवल पे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होगी जो पब्लिक डोमेन पे आएगी वो उस पे इन्फॉर्मेशन अपना ले सकते,
0: डाउनलोड कर सकते हैं. राइट, जल्दी से फटाफट हमें क्विकली एक एक मिनट के अंदर आप हमें डूज एंड डोंट्स बता दें चलते चलते कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, खास तौर पर ख्याल रखना है, होशियार बहुत ज्यादा नहीं बनना मुझे लगता है.
1: सबसे बड़ी मेरी दिल्ली के सभी नागरिकों से यही अपील है कि इस जनगणना के प्रोसेस में भागीदार हों और इसमें पार्टिसिपेट कर खुलकर करें. जो भी हमारे ऑफिसर्स आएँ उनको इन्फॉर्मेशन जो देनी है वो इमीडिएटली बताएं और अपना भी ध्यान रखें, गर्मी बहुत ज़्यादा है और हमारे ऑफिसर्स का भी ध्यान रखें.
0: जी बिल्कुल, ये बात तो मैंने भी कही है अभी और मुझे लगता है हमारे लिसनर्स जो हैं इतना इतने नरम दिल तो हैं कि वो अपने घर आए मेहमान का स्वागत तो करेंगी. आप क्या कहना चाहेंगी?
3: सभी श्रोताओं से हमारी यही अपील है कि इसको देश के लिए अपना जो एक देश सेवा का पार्ट मानते हुए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते हुए इस प्रक्रिया में जुड़ें और जितने भी हमारी टीम्स आएंगी वो हमारे बीच से ही हैं, वो हमारे परिवार का हिस्सा ही हैं, तो उनको उसी स्पिरिट में वेलकम करें और अपनी इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट दें, बिकॉज इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन से हमारी डिसीजन मेकिंग

0: में कुछ ना कुछ गलती हो
1: गड़बड़
0: सकती
1: होगी
0: है, तो
1: जी।
0: इसलिए आप सही इन्फॉर्मेशन और पूरी कोऑपरेशन के साथ इसमें भागीदारी
1: राइट,
0: बने।
1: आप बताएं विभा जी, आप कुछ कहना चाहेंगे?
2: हाँ, और जनगणना में हमारे जो मेन हीरोज हैं एक्सरसाइज के, वो हमारे इन्यूमरेटर्स हैं, जो कि एक एक घर पे जाकर इतनी गर्मी में काम करेंगे।
1: बिल्कुल
2: एंड दे आर मोस्टली स्कूल टीचर्स, जो हमारे मोस्ट रिस्पेक्टेड प्रोफेशन से हैं, तो उस चीज का ध्यान रखते हुए उतना ही उनको रिस्पेक्ट देते हुए सब अपना डेटा जरूर से अच्छे से दें।
1: जी, ना सिर्फ आप इस काम में लगे हों, बल्कि आप भी अपना डेटा वहां तक पहुंचा रहे होंगे, आप वो भी प्रक्रिया पूरी करेंगे, खुद की भी पूरी करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच, इट वॉज रियली डिलाइटफुल टू हैव यू हियर ऑन दिस शो, ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो वेरी मच। आज हमारे साथ जो है, हमने बात करी आशियाना में सेंसस 2027 यानी कि जनगणना 2027 को लेकर। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े रहे सलोनी राय, IAS, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ, और साथ में है शैलेंद्र सिंह परिहार, IAS, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल नॉर्थ, और इनके साथ हैं विभा शर्मा, डिप्टी डायरेक्टर, डायरेक्टरेट ऑफ सेंसस ऑपरेशन। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी कड़कती धूप में आप जो काम कर रहे हैं, हैट्स ऑफ, थैंक यू सो मच।
3: थैंक यू, थैंक यू मैडम।
1: लिसनर्स, आप सुन रहे थे आशियाना आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर, मैं हूं आपके साथ चालनी। चलिए अब आपसे विदा लेते हैं, जनगणना में जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा, और यही कहती हूं मैं आपसे कि डिजिटल भारत की नई पहचान जनगणना 2027 का सफल अभियान है कि नहीं।

0: अन्य वे चागे ने गनालो एचआईवी डी ए का खेगे वुले अन्य गनी तरह तरह न अर हमावन नाग वेरी केन कखेते कतोते चवे
1: हमावले लोवन निकस ना नसाते एचआईवी गनारी वे करोगली कचे कशो न्यूटे मजाजे ता कसारी अवे मुकचे के न कसावन्यू
0: किरी अवेंगा अजी हमावे कामाग शी मिन्येन कपे सानरा
1: नागालैंड स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वन जिके हमाचवे
2: Tongwai kisim chulai kine tenga phul khan ke homoi napungcha age paki bole dia khan kha lua kuria nimite manulaga gaude bimar kisim ulai jai alag no hoi kine calcium carbide chuntu olopi khaile tu amkhan laga kolija aru dusra body parts khan dibi cancer ulai jai chemical itude arsenic aru phosphorus hydride thake aru itu khai kine gaun nimite poisonous hoise kuile kumjur ulti aru jolopi jai aru pet chati suku skin khande julia nishina lage nak mok aro gola khande khujili hoy

0: FM 드래곤 밴 뉴스 뮤직 앤 엔터테인먼트 FM 103 메가헤르츠
1: हां जी बे लिसनर्स इट इज सो मेनी डियर्स इन रियल टाइम डे कोइमा ट्रैफिक लगा जानकारी यदि कोई दिया से नॉर्थ बाउंड टो लेडो तो नॉर्थ फिनिजा लगा ट्रैफिक डायरेक्शन से टुवर्ड्स हाई स्कूल एरिया और साउथ बाउंड टो साउथ फिनिया है लगा ट्रैफिक डायरेक्शन टुवर्ड्स बीओसी एंड न्यू मिनिस्टर सील तो मोंकोलार पीएचक्यू जंक्शन मजुदे से गले नॉर्थ बाउंड और साउथ बाउंड भी ट्रैफिक तो लाइट है से पीएचक्यू जंक्शन और मेजर जंक्शन मजुदे North bound line direction de traffic to light ase aro south bound line direction de traffic to moderate ase alagrasa logule to paramedical to t model to ig noliba ladies mile road edu rasta kan lower paribo tcp aro razor point majode north bound aro south bound de traffic to light ase edu nishina razor point to census point majode be north bound aro south bound de traffic to light ase High School Junction aro Census Point aro NHK Junction aro Census Point edo points kan tibi traffic to northbound aro southbound tibi light dikhai ase edo ase real time de koima traffic laga jankari apni gani tia hunile aji nimite ami han laga traffic jankari imanote seskrite obo aro agi baraina program ani tibole ase kaleidoscope

श्रीगण, कृपया ध्यान दे, आपकी एफएम ट्रैक बैंड की म्यूजिकल एक्सप्रेस एक बार फिर से तैयार है हिंदी फिल्मी गीत लाइव फोन इन प्रोग्राम के खूबसूरत सफर के लिए। तो साहिबान, कदरदान और मेहरबान, अपनी कुर्सी की पेटी कस के बांध लीजिए, दिल के कोने में छिपे पुरानी एहसास को जगा लीजिए और रेडियो का वॉल्यूम जो है वो थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, क्योंकि ये सफर होगा सिर्फ गुड वाइब्स का, सिर्फ अच्छे गीतों का और फुल ऑन एंटरटेनमेंट ही एंटरटेनमेंट का। एंड जी हाँ, अपना फोन उठा लीजिए और कॉल कीजिए 0370-224-3036। मैं रिपीट कर देती हूँ नंबर 0370-224-3036।

0: शाम के रंग अलग ही सुकून लाते हैं, हल्की सी हवा दिल को छू जाती है। शाम की रंग अलग ही सुकून ले आती है, हल्की सी हवा दिल को छू जाती है। कुछ यादें खामोशी में मुस्कुराती है और कुछ लम्हे बस महसूस किया जाते हैं और एहसास शाम सा लगने लगती है। वेल जी हाँ, साहिबान कदरदान मेहरबान, शुरू करते हैं हमारे लाइव ऑन इन प्रोग्राम, क्योंकि स्टूडियो में आ रहा है आपके ढेर सारे कॉल, नॉनस्टॉप कॉल्स आने शुरू हो चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं पहले कॉलर के साथ। हेलो
1: हेलो जी, नमस्ते
0: नमस्ते, गुड इवनिंग
1: गुड इवनिंग। मैं ग्राम बछोड़ा तहसील नागदा जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ।
0: अच्छा, तो प्रेम जी स्वागत है आपका हमारे आज के कार्यक्रम में।
1: जी थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप?
0: हम तो बढ़िया है, आप कैसे हैं?
1: मैं भी बहुत अच्छा हूँ और आपसे बात करके और भी अच्छा लग रहा है।
0: हमें भी बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। तो हम ढेर सारे बातें करेंगे, लेकिन फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहले आपके गीत ले लेते हैं हम। तो आज क्या सुनना पसंद करेंगे आप?
1: जी फिल्म का नाम है सलाम नमस्ते।
0: सलाम नमस्ते, अच्छा।
1: हाँ जी,
0: अच्छा,
1: शीर्षक गीत है ना वो, आप मिल जा फिर गले हंसते हंसते।
0: अच्छा, और कोई डेडिकेशन है?
1: जी हाँ, हमारा ग्रुप है खलो फरमाइश रेडियो एक्टा ग्रुप।
0: अच्छा,
1: उसके बहुत सारे श्रोता है, गौतम राय बोले, तुकाराम जादव, केसरी सिंह राजपूत, भगवान सिंह परमार, लोकेंद्र वर्मा, आशुतोष अविनाश, संगीता जी, कानपुर से पूनम जी, गंगटोक से पूनम जी, शिलोंग से शैली जी, आकाशवाणी लखनऊ के दीप्ति जोशी।
0: ओके
1: जी,
0: बस वही?
1: हाँ बस, बहुत सारे दोस्त है, सुनील जय भोपाल से है, रमेश टेलर है सीहोर से, और मतलब ऐसा ग्रुप बना हुआ है ना।
0: चलिए तो हम सभी श्रोताओं को डेडिकेट कर देते हो आपके ग्रुप के सभी श्रोताओं को, चलेगा?
1: जी बिल्कुल बिल्कुल।
0: अच्छा, तो प्रेम जी आपने रिक्वेस्ट किया है सलाम नमस्ते का टाइटल ट्रैक, राइट?
1: जी बिल्कुल,
0: कुलनाल गंजावाला की आवाज में।
1: हाँ जी,
0: चलिए तो हम बजा देंगे और

0: आपका फर्स्ट टाइम है यहाँ कॉल करे है या आप कॉल करते रहते हैं यहाँ पे?
1: जी मेरा करीबन 3-4 कॉल हो चुके हैं कोहिमा कार्यक्रम में।
0: अच्छा ओके हाँ। और आपको हिंदी हिंदी आते है नागामिस आते है या नहीं?
1: जी नहीं हमें केवल हिंदी आती है।
0: तो नागामिस तो समझ तो आते है ना?
1: जी हाँ थोड़ा बहुत अगर कुछ पूछे ना उसका समझ में आ जाता है, बट ऐसा कुछ एकदम समझ में नहीं आता है।
0: अच्छा अच्छा आई मीन इतने साल हो चुके हैं आप एफएम रघुपयन के साथ जुड़े हुए, तो सिर्फ हिंदी नहीं नागामिस भी थोड़ा बहुत तो समझ आनी चाहिए राइट?
1: जी बिल्कुल राइट कहा आपने।
0: अच्छा चलिए चलिए आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अभी हम सुनते हैं आपका रिक्वेस्ट किया हुआ गीत। शुक्रिया प्रेम जी,
1: थैंक यू सो मच, मुझे आपसे बात करके बहुत ही अच्छा
0: मुझे भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू,
1: ओके बाय
0: बाय। Alright, so ladies and gentlemen, my first request is that Prem Ji will request for you. So, tell us, Ghana, who you man itia, tai salam, namaste, la request korna se, sob ke dedicate korna se, man khushi. To milina, ito title track to who you Kunal Ganjawala la waste.

मुस्कुराहट से शुरू हर बात हो जाए, अनजानी राहों में भी मुलाकात हो जाए। मुस्कुराहट से शुरू हर बात हो जाए, अनजानी राहों में भी मुलाकात हो जाए। थोड़ी सी मस्ती, थोड़ी सी शरारत हो जाए, और हर दिल कहे सलाम नमस्ते, सलाम नमस्ते। वेल जी हाँ दोस्तों, वो था कुन्नाल गंजावाला की आवाज़ में आपने एक प्यारा सा गीत सुना है, सलाम नमस्ते के टाइटल ट्रैक। तो अभी बैठे हैं अगले कॉलर की तरफ जो अभी लाइन में है हमारे साथ, तो चलिए बातचीत करते हैं हमारे अगले कॉलर के साथ। एंड जी हाँ, अभी के लिए जो कॉलर हमारे साथ है वो कौन है, वो एक सस्पेंस है हमारे लिए। सो हेलो हेलो। वेल दोस्तों, शायद आज की लाइन फिर से काट गया, लेकिन हम उम्मीद पे, दुनिया कायम है तो उम्मीद पे जिएंगे। हम वेट करेंगे हमारे नेक्स्ट कॉलर का जो अभी फिर से एक कॉल आ रहा है, तो चलिए फिर से रिसीव करते हैं, देखते हैं लाइन क्लियर है कि नहीं। तो हेलो हेलो। वेल दोस्तों, शायद लाइन जो है वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन निराश ना होइएगा, आप हमें कॉल करते हैं। आपको पता ही है हमारे कॉल नंबर जो है 03702243036 में, इंग्लिश में भी एक बार बता देती हूँ। जी हाँ दोस्तों, अंग्रेजी में भी बता देंगे हम आपको 03702243036। जी हाँ, वो है हमारा नंबर। तो जब तक हम वेट करते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर का, तब तक हम मिलके सुनते हैं अगला ट्रैक। ऑलराइट, और यह अगला ट्रैक जो है ये है शानदार के फिल्म से, एक बहुत ही शानदार सा ट्रैक है। गीत का नाम है शाम शानदार, क्योंकि आज के शाम जो है वो शानदार ही शानदार है, तो क्यों ना हम सुने शाम शानदार, जिसको गाया है अमित त्रिवेदी ने। म्यूजिक जो है वो दिया है अमित त्रिवेदी, लिरिक्स लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य, एंड ये फिल्म जो है वो रिलीज हुआ है 2015 में। तो चलिए इस शाम शानदार में मिलके सुनते हैं ये शानदार सा गीत।

0: हाँ जी दोस्तों, शान है शानदार और हमारे पास दूसरा कॉलर अभी लाइन पे लग चुके हैं, तो चलिए मिलके उससे बात करते हैं, सुनते हैं उनके आवाज। हेलो,
1: हेलो,
0: गुड इवनिंग,
1: गुड इवनिंग,
0: वेलकम टू द शो कॉन्क्वेस्ट। ना
1: आपके पास दिल वाले हैं?
0: दिल वाले जरूर है, लेकिन हम आपके नाम जानना पसंद करेंगे पहले। तो आपका नाम क्या है, क्या मैं जान सकती हूँ? अच्छा, रुकविले मेथा, स्वागत है आपका हमारे आज के कार्यक्रम में। तो दिल वाले लगाना की फिल्म बाकी गाना होनी हो मुझे से अपनी
1: एनी
0: सॉन्ग फ्रॉम दिल वाले। अच्छा, और डेडिकेशन कुंबा इज नॉट जस्ट फॉर योर लिसनिंग प्लेजर।
1: डेडिकेशन तो कमल बसुमतारी, विमल बसुमतारी, अंजलि बसुमतारी,
0: अच्छा,
1: रमेश पाटन, हितिन दास,
0: राइट,
1: मंदिरा,

0: to
1: right.
0: you,
1: Achha.
0: To all the judges.
1: Thank you. Okay.
0: And then,
1: okay.
0: After this, we are going to participate here, na?
1: Achha, achha.
0: Yeah, we'll love to dedicate karidega.
1: चलो चलो ठीक है, तो हम सभी को डेडिकेट कर देते हैं, जो जो नाम अभी आपने लिया है उन सभी को डेडिकेशन जाता है रोकोविले मेथा की तरफ से. ऑलराइट,
0: थैंक यू, शुक्रिया.
1: अच्छा तो रोकोविले होनी थे बिशे, थैंक्स अजय शाम भी कॉल करा करने ईदे आपने लगाना तो बचाई दी ओला से. एंड मे यू हैव अ प्लेजेंट नाइट.
0: थैंक यू.
1: ओके, थैंक यू. Yes, my dear listeners, ito thai share rokovile metha aro tai request korea la gana ite bajai diola se man listeners khan de dedicate korna se dil wale ka na aur khushi ekta bajai diye kuch hai. To maine choose kiya hai Kumar Sanuda ki awaaz mein ek aisi ladki, and ye geet jo hai music diya hai Nadeem Shravan ne, lyrics likha hai Sameer Da ne. To chaliye milke sunte hai Kumar Sanuda ki awaaz mein ek aisi ladki.

0: मौसम की बातों में प्यार नजर आता है, हल्की सी मुस्कुराहट दिल को छू जाती है। मौसम की बातों में प्यार नजर आते हैं, हल्की सी मुस्कुराहट दिल को छू जाती है, और हर महफिल में एक याद बन जाती है, और हर धड़कन कहती है एक ऐसी लड़की। वेल जी हाँ दोस्तों, रोको भी ले मैं थावा रिक्वेस्ट करा लगाना हुई लिशी, अभी बैठे हैं अगले कॉलर की तरफ और सुनते हैं और बात करते हैं उनसे भी। हेलो हेलो राइट अजी लाइन दो ठीक न होना से आहिबो जाओ होना से, बट दैट्स नॉट गोना स्टॉप अस फ्रॉम हैविंग आवर वन ऑन वन इंटरेक्शन राइट। तो रुकी रहो, नेक्स्ट कॉलर दे रुकी रहो, आपने अन कॉल करूंगी मान ला शो दो 7:10 तक जाओ लैसे, तो हमारे पास ढेर सारे समय है अभी बचा, तो कॉल करूंगी रुकी ऐसे अपने हाल ला कॉल अपने हाल ला देखो था बोले। And there we have the next caller. Lucky us, right? So let's talk to him. Hello, him or her. Hello.
1: Hello.
0: Good evening.
1: Good evening.
0: Namaskar.
1: Didi. Namaskar, namaskar, didi.
0: हाँ जी.
1: मैं त्रिपुरा से बोल रहा हूँ दीदी.
0: अच्छा, क्या मैं आपके नाम जान सकती हूँ?
1: हाँ जी, हाँ जी. मेरा नाम है दुर्गेश चौधर.
0: अच्छा अच्छा, आपका स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम में.
1: तो आज तो पहले बार जाना है कुलमा, मैं तो उस टाइम में गया था.
0: अच्छा ओके, तो अच्छा लगा?
1: हाँ जी हाँ जी, मैं तो उस टाइम में रोड है ना, इसी जगह में था 1.5 साल.
0: ओ जान के अच्छा लगा, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस?
1: अभी बहुत अच्छा ही लगा, मेरा सीमेंटरी है जो ना.
0: अच्छा,
1: इसी में गया फोटो तो खींचकर और जो जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस उसी जगह में गया था.
0: बहुत अच्छा लगा जान के, और भी हम बात करेंगे ढेर सारे आपके एक्सपीरियंस के बारे में, लेकिन फर्स्ट थिंग फर्स्ट, शुरुआत में आप क्या गीत सुनना चाहते हैं वो हमें बता दीजिए ताकि हम ढूंढ सके और बजा सके आपके लिए.
1: दीदी मैंने मुझे सुना दीजिए 1942 लव स्टोरी, एक गाना एक
0: अच्छा
1: एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा.
0: बहुत ही अच्छा चॉइस है, किसी लड़की को डेडिकेट करना चाहती है क्या आप या?
1: नहीं, बाल बच्चा भी है
0: तो आप आपकी बीवी को डेडिकेट कर सकते हैं ना?
1: हाँ जी हाँ जी, वो यही होगा.
0: चलो चलो, एक बहुत ही प्यारा लव सॉन्ग है, क्या आपकी बीवी आपके पास है अभी?
1: नहीं नहीं दीदी, मैं तो मार्केट में था.
0: अच्छा, ओ आप मार्केट में से हमें कॉल कर रहे हैं? सच डेडिकेटेड लिसनर, लेकिन आप आपकी बीवी को जरूर बताइएगा कि आप ये गीत उनको डेडिकेट कर रहे हैं FM ट्राइगोपैन के जरिए से.
1: और दीदी जो रायपुर का जो पूजा होती है ना दुर्गा माई का,
0: हाँ जा,
1: तो इसी जगह में गया था.
0: ओ अच्छा ओके, तो
1: देखा था ना उस टाइम में. नाकाम जो ना वो तो भूल गया, इस टाइम में तो जैसा
0: अच्छा
1: किनिकासे
0: लेकिन हिंदी और नागामीज जो है वो इतना बड़ा डिफरेंस भी नहीं है, थोड़ा थोड़ा सिमिलरिटीज है, तो समझ आ जाएगा. सुनते रहिए FM ट्राइगोपैन, यहाँ पे हम हिंदी शोज भी करते हैं, नागामीज में भी बात करते हैं, तो आपको समझ आ जाएगा जरूर अगर आप सुनते रहते हमारे साथ. तो
1: जैसे क्लिनिका से मुई तो बाला से, अपनी क्लिनिका से
0: मुई भी बाला से. तो अच्छा, तो भैया जी बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, ढेर सारे बातें करना चाहती है लेकिन समय कम है हमारे पास, कॉलर्स कॉल आ रहा है, कॉल पे कॉल आ रहा है, तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, और ये गीत हम आपकी बीवी को जरूर डेडिकेट करेंगे.
1: ठीक है,
0: चलो थैंक यू. Alright, ladies and gentlemen, तो इतना मान मिली ना हुई वो मान बाल एक ता गाना रिक्वेस्ट करी थी त्रिपुरा वा 1942 a love story ला फिल्म रिक्वेस्ट करे से एक लड़की को देखा.

0: एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, सच ब्यूटीफुल। प्यारा सा लव सॉन्ग था कुमार सानुदा की आवाज में। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं अगला कॉलर के फरमाइश जो अभी आ रहा है, लाइन पे है हमारे साथ। तो चलिए, हेलो
1: हेलो
0: हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार।
1: नमस्कार मैम।
0: हाँ जी,
1: मैं रमेश प्रजापति, ग्राम माया, तहसील रेंटी, जिला सीहोर, एमपी से बोल रहा हूँ मैम।
0: अच्छा, तो रमेश जी, पहली बात जो है वो हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। तो रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप पीछे रेडियो बजा रहे हैं तो वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर दीजिए, ताकि हमारा
1: बंद कर दिया ना, मैं तो आवाज आएगी।
0: बहुत बहुत शुक्रिया।

0: क्योंकि डिस्टरबेंस होगा तो हम आपके साथ ढेर सारी बातें कैसे करेंगे, राइट? तो चलिए चलिए, शुक्रिया बंद कर देने के लिए एंड स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद।
0: अच्छा, तो पहले थिंग क्या सुनना पसंद करेंगे आज आप?
1: चमेली की शादी है।
0: चमेली की शादी, चलिए हम सुनते हैं चमेली की शादी। तो हाँ है हमारे पास, दो गीत है चमेली की शादी की फिल्म से। कौन सा वाला है? हमारे पास है पीना हराम और चमेली चमेली चमेली की शादी, दोनों है।
1: वो चमेली चमेली चमेली वाला सुना।
0: अच्छा चलिए हम बजा देंगे। एंड डेडिकेशन है क्या आपके पास?
1: जी जी जी जी, मेरे मित्र है भगवान सिंह परमार है, पूरन धर्मा जी है, गजराज योगी जी है, केसरी सिंह राजपूत है, मंगरत चंदेल है, वो धर्मवीर है दिल्ली से, आशुतोष जी है, संगीता जी है, मुनम जी है कानपुर से, अभिनव जी है पूर्णिमा जी है, राकेश है शिमला से, बिमल है असम से, रामन भस्माकारी है गोल्डी जी है, और रामन सिंह साहू है, भाई को मुंडा है रमेश पात्र है।
0: अच्छा,
1: और आप लोग सभी?
0: चलो चलो रमेश जी, हम डेडिकेट कर देंगे। और जी हाँ रमेश जी, क्या आप अकेले रहते हैं या परिवार के साथ है?
1: मैं परिवार के साथ है मैम।
0: तो चलिए आरजे केनी की तरफ से आपके सभी परिवार को बड़ा वाला सलाम, स्वागत है एफएम ट्राइगोपैन में।
1: जी जी जी, मैं तो दुकान पे हूँ, वो घर पे है, वो सुनेंगे लेकिन।
0: अच्छा चलो चलो, हमारा सलाम जरूर पहुँचा दीजिएगा आपके परिवार।
1: बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल पहुँचा देंगे।
0: चलो चलो, तो रमेश चलिए मिलके सुनते हैं आपके गीत। थैंक यू, गुड नाइट।
1: थैंक यू, गुड नाइट।
0: ऑल राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, इतु थैसे रमेश ताइमम बालगाना एकटा रिक्वेस्ट करेछे, गाना तो ओवर इंटरेस्टिंग, अनिल कपूर आर कोरस देसे चमेली चमेली चमेली की शादी, फर्स्ट टाइम होने वाला है। सो चलिए मिलके सुनते हैं ये प्यारा सा गीत चमेली की शादी की फिल्म से।

0: हां जी दोस्तों, चमेली चमेली लग चुका है ये गीत मेरे जुबान पे। और यहाँ स्टूडियो का माहौल जो है वो थोड़ा मस्ती है, क्योंकि आरजे आरोंगदी को भी ये गीत बहुत ही ज्यादा पसंद आया। नाच नाच के थक चुके हैं आरजे आरोंगदी अभी के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले ट्रैक की तरफ, सुनते हैं अगला कॉलर के रिक्वेस्ट और बजाते हैं हम जल्दी से। हेलो हेलो हेलो हेलो, All right, another one. Hello.
1: Hello, नमस्कार.
0: नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे आज के कार्यक्रम में.
1: जी हम धेमाजी आसाम जुनाई मिसा के साथ से बिमोल बसंत बोल रहे मैम.
0: बिमोल
1: जी, जी जी.
0: अच्छा तो बिमोल जी, आज शाम जो है कैसे हैं आप?
1: जी आज ठीक है, अभी थोड़ा दिन में बारिश आया था, अभी ठीक है मैम.
0: तो आप घर पे हैं या काम पे हैं या?
1: जी हम मेरा दुकान था, दुकान में दुकान से आ गया हम घर में से लेकर काम करते हैं हम.
0: अच्छा ठीक है, तो आज शाम जो है क्या गीत सुनना पसंद करेंगे आप?
1: हमको मैम करण अर्जुन है.
0: करण अर्जुन होना तो चाहिए, ठीक है हम ढूंढते. कौन सा वाला गीत सुनना चाहेंगे आप? करण अर्जुन किसकी फिल्म से?
1: करण अर्जुन का वो भी हो जाएगा, जय माकाली वो भी हो जाएगा मैम.
0: अच्छा, और डेडिकेशंस है या?
1: जी जी जी, मेरे दोस्त लोग है डेडिकेशन करने के लिए.
0: अच्छा,
1: आइकन मुंडा है, अमोल बसुमतारी है, देरासर बसुमतारी है, अंजनी बसुमतारी, सुनीता बसुमतारी, रमेश पत्र और धर्मवीर है, राकेश सर और रमेश प्रजापति है.
0: अच्छा,
1: बहुत है हम लोग का रुखुदुला मीठा, बहुत है साथी.
0: हम सभी रेगुलर लिसनर्स को ही डेडिकेट कर देते हैं आपके नाम से.
1: अच्छा,
0: लेकिन बिमोल जी यहाँ पे एक बात है, दैट इज हमारे पास करण अर्जुन की फिल्म जो है वो तो नहीं है, लेकिन आई एम श्योर आपके पास कुछ और ऑप्शंस होगा, हम जरूर बजा देंगे. आपके पास कुछ और गीत जो आपके मन में हो तो आप बता सकते हैं हमको?
1: क्रूट फिल्म है, क्रूट मूवी.
0: क्रूट
1: क्रूट मूवी का सॉन्ग.
0: अच्छा, और अगर वो भी नहीं हुआ तो कौन सा वाला सुनना पसंद करेंगे आप?
1: मिशन कश्मीर का एक सुना दीजिए.
0: चलिए चलिए, आपके पास बहुत ही देर से अच्छे अच्छे फिल्म के गीत मांग रहे हैं आप, बहुत ही अच्छा लगा. तो हाँ जी, हाँ जी, हमें मिल गया मिशन कश्मीर, मिल गया. तो कौन सा वाला गीत सुनना चाहेंगे आप?
1: मिशन कश्मीर का अच्छा वाला गाना सुना दीजिए, हो जाएगा उदित नारायण का सॉन्ग.
0: उदित नारायण की आवाज में तो ये बहुत ही प्यारा सा गीत है, चुपके से सुन, क्या वो सुनना पसंद करेंगे आप?
1: जी मैम ठीक है,
0: मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ये गीत, एंड आपने ये रिक्वेस्ट किया तो बहुत ही खुशी हुआ. तो चलिए बिमोल जी, काफी देर ढूंढने के बाद आपका गीत अभी रेडी है हमारे

0: कंप्यूटर में, तो अभी हम बजा देंगे आपके लिए। बहुत ही शुक्रिया रिक्वेस्ट करने के लिए।
1: थैंक यू मैम, नमस्कार।
0: नमस्कार। तो लिसनर्स का निधि दैजी मालाल फ्रेंड बिमोल तवा रिक्वेस्ट करा गाना इतिया हुनियो मिशन कश्मीर बा चुपके से, और ये तो गाना तो मान भाल गाना एकता से उदित नारायण दा आवाज से। तो चलिए मिलके सुनते हैं और एंजॉय करते हैं।

0: चुपके से सुन इस पल की धुन, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है ये गीत। एनीवे चलिए दोस्तों, समय निकलता जा रहा है, कॉलर्स जो है वो लाइन में है, तो सुनते हैं अगले कॉलर के आवाज़, बात करते हैं उनसे एंड जानते हैं उनको क्या गीत सुनना है। लेकिन अभी के लिए जो है थोड़ा इंतज़ार करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ लाइन जो है वो थोड़ा एंगेज हो रहा है, क्योंकि ढेर सारे कॉलर्स जो है वो लाइन में है, तो शायद इसीलिए कुछ लाइन में कुछ गड़बड़ सा है, लेकिन ट्राई करते हैं, चलिए बात करते हैं। हेलो हेलो, हाँ जी दोस्तों, लाइन में कुछ गड़बड़ सा है, लेकिन हम इंतजार करते हैं और आ चुके हैं, तो चलिए बात करते हैं। हेलो,
1: गुड इवनिंग मैम।
0: गुड इवनिंग सर, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
1: थैंक यू मैम, आपने मेरे को प्रोग्राम में शामिल किया।
0: अच्छा, तो हम कौन से बात कर रहे हैं आज, नाम आपका?
1: मैं सेवन सिस्टर त्रिपुरा से बोल रहा हूँ।
0: अच्छा, और आपका नाम क्या है?
1: मेरा शुभ नाम है आशुतोष।
0: आशुतोष, आप बहुत ही प्यारा नाम है आशुतोष, और एक बार फिर स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
1: थैंक यू मैम।
0: तो आशुतोष जी, आज शाम क्या गीत सुनना पसंद करेंगे आप?
1: मैम जी, आज मुझे सुना दीजिए, 1980 में रिलीज हुआ।
0: अच्छा,
1: फिल्म का नाम है धन दौलत।
0: धन दौलत, अच्छा, धन दौलत अगर ना हो तो कोई अलग गीत जो आप सुन?
1: बिल्कुल होगा, ऑप्शन होगा, मेरे पास काफी ऑप्शन है गाने का।
0: और आशुतोष जी, आप लकी है, क्योंकि धन दौलत जो है वो हमारे पास है।
1: थैंक यू मैम।
0: तो कौन सा वाला गीत सुना?
1: मुझे सुना दीजिए कि आशा जी और किशोर दा ने गाया है, गाने का बोल है जीना क्या आजी प्यार बिना।
0: जीना क्या, किशोर कुमार और आशा भोसले जी की आवाज में। जी हाँ, मिल चुका है। तो कोई डेडिकेशन?
1: हाँ बोल रहा हूँ मैम जी। अच्छा, और इस गाने को लिखा है मशहूर लिरिक्स मजरू सुल्तानपुरी जी ने।
0: हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल सही।
1: और इस गाने को सुर से सजाया राहुल देव बर्मन जी ने।
0: हाँ जी बिल्कुल, 100% सही कहा है आपने, बहुत इम्प्रेसिव है, थैंक यू सो मच।
1: और मैं ये आपको सुनाना चाहता हूँ मैम जी, ये गाना।
0: शुक्रिया शुक्रिया।
1: और मध्य प्रदेश से मेरा रेडियो दोस्त, बहुत अच्छा अच्छा दोस्त है।
0: अच्छा,
1: रमेश प्रजापति जी का तो फोन लग गया था, मैंने सुना था।
0: हाँ जी,
1: उनको सुनाना चाहता हूँ, भगवान सिंह पारमार।
0: ओके,
1: प्रेम सिंह भाइया और राम बाबू शर्मा, केसरी सिंह राजपूत।
0: अच्छा,
1: और त्रिपुरा से।
0: ओके,
1: थोड़ी देर पहले उनका भी फोन लगा था, सूत्रधार।
0: ओके ठीक है,
1: और सुनेंगे त्रिपुरा धर्मानगर से अविनाश तेली जी, नियमित श्रोता है।
0: अच्छा,
1: कोहिमा का।
0: ओके,
1: और मैम जी नागालैंड में तो मेरा ताल्लुक है नागालैंड का साथ।
0: अच्छा ओके,
1: क्योंकि मेरा रिश्तेदार कोहिमा में नहीं, दिमापुर में है।
0: ओके ओके, ऑलराइट, जानकर बहुत अच्छा लगा।
1: मैं 5-6 बार गया था दिमापुर में।
0: ओ, तो कैसा लगा आपको दिमापुर?
1: हाँ दिमापुर तो बहुत अच्छा लगा मैम जी।
0: अच्छा, तो कोहिमा को नहीं आया आप?
1: मैं लास्ट आया हो गया मैम जी, लगभग 20 साल पहले लास्ट गया।
0: ओ, लॉन्ग टाइम बैक ना।
1: लॉन्ग टाइम।
0: हाँ हाँ,
1: और मेरा जो रिश्तेदार रहता है एनएसटी कॉलोनी।
0: अच्छा अच्छा ओके,
1: और दिमापुर का बहुत पुराना जो होटल है सिटी टावर होटल।
0: हाँ जी,
1: पीछे ही रहता है।
0: ओके अच्छा, तो आशुतोष जी काफी ज्यादा अच्छा लगा आपसे बात करके, आपके एक्सपीरियंस, दिमापुर के एक्सपीरियंस सुन के। और जब भी आप नागालैंड पे फिर आए विजिट किए, तो जरूर कोहिमा भी आएगा, कोहिमा में आए हमारे आकाशवाणी कोहिमा भी, कोहिमा स्टेशन पे आगे जरूर विजिट कीजिएगा।
1: बिल्कुल।
0: तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, हम बजा देंगे आपके लिए आपका रिक्वेस्ट किया हुआ गीत धन दौलत से। तो बहुत बहुत शुक्रिया रिक्वेस्ट के लिए और डेडिकेशन के लिए भी।
1: Very, very thank you.
0: तो यस लिसनर्स खान, इतना मिली ना हुई वो धन दौलत ला फिल्म बार रिक्वेस्ट कर गीत, और गीत ला नाम दो जीना किया।

0: अब मैं तबरा स्टूडेंट्स लोगों के डिजिटल स्किल्स जलाबली अनुरोध करी और आकाशवाणी कोहिमार ब्रॉडकास्टिंग लगा 90 साल मनाएगे ना म्यूजिकल कॉन्सर्ट राखी से। इतिया पूरा खबर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ब्रा मेडिकल इंट्रेंस एग्जाम नीट UG 2026 जून 21 तारीख दोबारा रखी जानसे आकेदी एट महिना 3 तारीख एग्जाम राखिया पेपर लीक हुआ कारण केन्सल कर दी और CBI ब्रा मामला दी जांच कर NTA ब्रा कैंडिडेट्स और बाबा माखान लगे ऑफिशियल चैनल सिकला दी विश्वास अनुरोध कर एक समय यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेन्द्र प्रधान आज कैसे कि सरकार स्टूडेंट्स लोगों उच्च ध्यान रखी आसे और तब सेंसिटिव थकी आसे खबर मानकान लगे नई दिल्ली कथा कर श्री प्रधान एग्जाम दो सब इकी और खुला और साफा रखी विश्वास जानसे।
1: हमारी सर्वोपरि प्राथमिकता है।
2: आवर फोरमोस्ट प्रायोरिटी इज द वेलफेयर एंड फ्यूचर ऑफ द स्टूडेंट्स एंड द गवर्नमेंट रिमेन्स डीपली माइंडफुल ऑफ द हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन दे इन्वेस्ट इन देयर स्टडीज। फॉलोइंग द कंडक्ट ऑफ द एग्जामिनेशन ऑन 3rd मे वी वर डिटरमाइंड टू इंश्योर दैट नो जेन्यून कैंडिडेट वॉज डिप्राइव्ड ऑफ अ फेयर अपॉर्चुनिटी ड्यू टू द अनएथिकल प्रैक्टिसेस ऑफ द एजुकेशन माफिया।
1: एजुकेशन माफियाओं के षड्यंत्र से सही छात्र की अधिकार वंचित हो जाए।
0: एजुकेशन मिनिस्टर कैसे कि NTA किसान बदली कर दरकार आसे और पाशी नियम नहा काम खान रखा एग्जामिनेशन सिस्टम मजबूत कर दी गदम खान उठाबले आसे तार कैसे कि आहिया साल नीट UG एग्जामिनेशन तो इतना थकिया OMR नियम दी नहना कम्पिटर बेस टेस्ट मोड राखी आसे। पूरा दुनिया दी एनर्जी दाम उठी थकिया समय ऑयल कम्पनीज पेट्रोल और डीजल लगा 1 लीटर दी 3 टका उठाई दी नई दिल्ली दी पेट्रोल दो 1 लीटर दी 97.77 रुपीज पर उठी और डीजल दो 90.67 रुपीज दी उठी इतु निचिना उठाई दिया दी दूसरा मेट्रो सिटीज दी मुम्बई कोलकाता बेंगलुरु और चेन्नई दी एक ही समय दी इंट्रा प्रसादा गैस लिमिटेड पर कम्प्रेस्ड नेचुरल गैस CNG दी आज 2 टका उठाई दी दाम खान उठाई दिया पाशी दिल्ली दी नतून दाम दी 1 किलोग्राम CNG दी 79.09 रुपीज आसे। पार्लियामेंटरी ऑफिस मिनिस्टर किरण रिजिजू कैसे कि वेस्ट एशिया झाकरा पाशी दुनिया दी तेल लगा दाम उठी थकिया कारण दुख पाई आसे। एक तो सोशल मीडिया पोस्ट टीटर कैसे कि किसान देश 20% 100% तक उठाई दी कि इंडिया पेट्रोल दी खाली 3.2% और डीजल दी 3.4% उठाई दी। एजु कनेक्ट कनेक्टिंग एजुकेशन टू अपॉर्चुनिटीज लगा 4th एडिशन टू आज डिमापुरी राखी से अफसर दी इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ नागालैंड आईडेन पर क्रिप्टिक सोलो लोग मिलाई जर्का कुरिया नौजवान लोग हायर एजुकेशन और करियर ऑप्शंस एक्सप्लोर कर प्लेटफॉर्म हिसाब राखी से अफसर दी कथा कर आईडेन चेयरमैन अबू मेहता कामयाब करियर बना एजुकेशन और टेक्नोलॉजी लगा दरकार जानसे तार स्टूडेंट्स लोग हतई शिक्षा डिजिटल स्किल्स जान और सोशल मीडिया जिम्मेदार चला अनुरोध कर श्री मेहता कैसे मॉडर्न एजुकेशन ट्रेडिशनल प्रोफेशन्स ऊपर अलग अलग करियर रास्ता खानी आस और सब काम दे मन दिखे इंटिग्रेटी हम जाना दी
3: for success. I want to tell the student community of the state that in today's day and age, knowledge is power.
0: अफसर लगा एक दरकार फीचर दी एक मेमोरेंडम अफ आंडारस्टैंडिंग आईडेन और एट्रिया इन्स्टिट्यूट अफ टेक्नोलॉजी मजुदे सैन कर एग्रीमेंट पर एकेडेमिक कोऑपरेशन स्किल डेवलपमेंट स्टूडेंट खान प्रोग्राम दी शामिल हबली दी और एट्रिया IT स्कॉलरशिप तो नागालैंड पर मेरिटोरियस स्टूडेंट्स लोग आईडेन पर स्कॉलरशिप कारण एप्लीकेशन इवेलुएट कर फर्स्ट शॉर्ट लिस्ट जून 15 तारीख तक जमा दी आसे। आकाशवाणी कोहिमार अपनी खान लोग खबर आनी दी आसे ताजा खबर शुनबे अमी खान लगा एक्सटेंडल्स AIR न्यूज अलर्ट्स और AIR _ कोहिमा दी फलो करी अपनी खान पा इदु खबर दो न्यूज ऑन इयर एप और यूट्यूब चैनल AIR न्यूज कोहिमार शुनबी पा। वेलकम बैक अपनी खान सामलगा खबर शुनी आसे नागालैंड लेजिस्लेटिव असेंबली स्पीकर शरिंगान लंगखमरा कमिटी ऑफ प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स टू फ्रेम द यूनिफॉर्म मॉडल ऑफ रूल्स ऑफ procedure and conduct of business of legislative body.

आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा के लिए हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और

0: बाद नौबहन के लिए भारत के समर्थन की फिर पुष्टि की। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों ने लोकतांत्रिक वैश्विक शासन और शांति तथा जलवायु चुनौतियों पर मजबूत बहुपक्षीय कार्रवाई का आह्वान किया। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में मुख्य सरगनाओं में से एक को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज में दुष्कर्म और हत्या मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित किया। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू चलने की संभावना व्यक्त की। भारतीय वुशु टीम ने मकाऊ में आयोजित सांडा विश्व कप में 2 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते और ताशकंद में भारत ने एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर जोर दिया। अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ आज उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने यूएई के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना यह हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: दोनों देशों ने एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कोऑपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। साथ ही स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सप्लाई के लिए एक अलग एग्रीमेंट भी। ये दोनों कदम वेस्ट एशिया में जारी टेंशन के बीच भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को सीधा एड्रेस करते हैं। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबू धाबी।
0: आकाशवाणी से बातचीत में यूएई में भारत के दूत दीपक मित्तल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अबुधाबी यात्रा के दौरान भारत और यूएई ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, निवेश और व्यापार में सहयोग को गहरा करने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए हैं।
3: प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान कई रणनीतिक घोषणाएं की गई। भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और भारत तथा संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा साझेदारी को मजबूत करने के लिए दीर्घकालिक निर्णय लिए गए। आज नेताओं के बीच हुई चर्चाओं में प्रौद्योगिकी के विषय पर भी बातचीत हुई। भारत में 8 एक्साफ्लॉप सुपर कम्प्यूट सुविधा स्थापित करने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही भारत के वादिना में जहाज मरम्मत इकाई विकसित करने में साझेदारी करने का यूएई का निर्णय भी शामिल है।
0: संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स के लिए रवाना हो गए हैं। एक रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में शुक्रवार देर रात नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा न केवल दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि हाल ही में संपन्न इंडिया यूरोप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के संदर्भ में पूरे यूरोप पर असर डालने वाली साबित होंगी। व्यापार की दृष्टि से नीदरलैंड्स भारत का 11वां बड़ा साझेदार है। दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार गत वर्ष $27.8 बिलियन का रहा है। निवेश के मामले में भी नीदरलैंड्स चौथा बड़ा निवेशक है। प्रधानमंत्री अपने इस महत्वपूर्ण दौरे के दौरान नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब यतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे एवं डच राजा विलियम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी शिष्टाचार भेंट करेंगे। शनिवार को प्रधानमंत्री नीदरलैंड्स में कम्युनिटी इवेंट को संबोधित करेंगे एवं नीदरलैंड्स की प्रतिष्ठित कंपनियों के सीईओ से भी मुलाकात करेंगे। नीदरलैंड्स से आकाशवाणी समाचार के लिए सुश्रुत शर्मा।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों

0: के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉ. जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने वैश्विक शासन में सुधार और उसे बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जारी वक्तव्य में ये बात कही गई। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इन चुनौतियों और उनसे जुड़े सुरक्षा खतरों का जवाब राजनयिक उपायों के जरिए देने का आह्वान किया। उन्होंने संघर्ष की रोकथाम के प्रयासों में शामिल होने की आवश्यकता पर भी बल दिया। इसमें संघर्ष के मूल कारणों को संबोधित करना भी शामिल है। मंत्रियों ने बहुपक्षवाद को बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता पर बल दिया। नई दिल्ली में बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंध मामलों के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि ब्रिक्स के सभी सदस्य सहयोगी देशों ने स्थिरता के निर्माण के लिए भारत की अध्यक्षता की प्राथमिकताओं का समर्थन किया।
1: ब्रिक्स के सभी सदस्य और साझेदार देश लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के निर्माण की थीम पर भारत की अध्यक्षता की प्राथमिकताओं की सराहना और उनका समर्थन करते हैं। पिछले दो दिनों में हुई चर्चाओं और इन विचार विमर्श के आधार पर हमने एक अध्यक्षता वक्तव्य और एक परिणाम दस्तावेज जारी किया है। इसमें ब्रिक्स की रणनीतिक साझेदारी के तीन स्तंभों के अंतर्गत आने वाले लगभग सभी विषयों पर ब्रिक्स सदस्यों की साझा स्थिति को दर्शाया गया है।
2: अंडर द थ्री पिलर्स ऑफ ब्रिक्स स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप।
0: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि भारत पश्चिम एशिया में शांति स्थापना में बड़ी भूमिका निभा सकता है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री अराक्ची ने कहा कि ईरान से जुड़े किसी भी मामले का सैन्य समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि ईरान हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सभी जहाजों को गुजरने में मदद करने के लिए तैयार है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: स्कीम के टेली लॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। कुलकर्णी रसायन विज्ञान के लेक्चरर हैं और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीई की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थे। एजेंसी ने पिछले 24 घंटों में देश भर में कई स्थानों पर तलाश अभियान चलाया और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मोबाइल फोन जब्त किए। इससे पहले गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों में से 3 जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 नासिक से है। सभी आरोपियों को दिल्ली की अदालत ने 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। कई अन्य संदिग्धों से पूछताछ जारी है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को आज कर्तव्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित किया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि निलंबित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच कराई जाएगी। आज ही कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कार्यरत महिला स्नातकोत्तर रेजिडेंट डॉक्टर की अगस्त 2024 में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्थी में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर एक जनसभा में रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है।
2: फ्यूज जो होता है वह किसी भी गोला बारूद का सबसे यह इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है, चाहे आर्टिलरी शेल हो, बॉम्ब हो या कोई भी युद्ध सामग्री हो। बिना भरोसेमंद इलेक्ट्रिक फ्यूज के सब बेकार है। यहाँ बनने वाले अत्याधुनिक फ्यूज हमारी सेनाओं को ताकत देंगे और यह प्रोजेक्ट हमारी एमिनिशन मैन्युफैक्चरिंग में सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता का एक नया चैप्टर जोड़ेगा।
1: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने वर्चुअल माध्यम से आज राज्य

0: राज्य में 400 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्ष में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
1: इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में देश ने बहुत बड़ी छलांग लगाई है इन 12 वर्षों में। जहां मात्र 1-2 लाख करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग होता था, आज भारत में 13 लाख करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है, 6 गुना वृद्धि। और भारत से एक्सपोर्ट होने वाली कमोडिटीज में आज मोबाइल फोन सबसे पहली कमोडिटी बन गई है, और इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपोर्ट इस पिछले दशक में 11 गुना बढ़े हैं।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने आज से ईंधन बचाने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। इनमें अलग अलग दिन वर्चुअल सुनवाई, न्यायाधीशों की कार पूलिंग और 50% रजिस्ट्री कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था शामिल है। ये निर्णय ईंधन की खपत कम करने के केंद्र सरकार के व्यापक प्रयासों के अनुरूप है। दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया 30 जून से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि यह प्रक्रिया 29 जुलाई तक चलेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे NewsOnAIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ के अलग अलग हिस्सों में लू की संभावना व्यक्त की है। कोंकण और गोवा में मौसम के अत्यधिक गर्म और उमस भरे रहने का पूर्वानुमान भी जारी किया गया है। विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तेज से बहुत तेज बारिश का अनुमान जताया है। अगले 2 दिन केरल, माहे, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के कुछ हिस्सों में भी इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। विभाग ने कहा है कि केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के 26 मई तक आने की संभावना है। केरलम में मानसून के आगमन की सामान्य तिथि 1 जून है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में आज लगभग 0.2% की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 161 अंक फिसलकर 75,238 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 46 अंक डूबा और 23,644 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 21 पैसे कमजोर होकर 95.97 रुपए के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ।
0: भारतीय वुशु टीम ने मकाऊ में 11वें सांडा विश्व कप में 2 स्वर्ण 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीतकर कुल 5 पदकों के साथ अपने अभियान का शानदार समापन किया। भारत पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा। अपर्णा दहिया और शिवानी ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भारतीय युवा मुक्केबाजों ने आज 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। भारत ने अंडर 17 वर्ग में 8 कांस्य पदक जीते हैं। इससे पहले एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी में भारत ने 9 स्वर्ण 6 रजत और 12 कांस्य सहित कुल 27 पदक जीते। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ में लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई ने 15 ओवर में 4 विकेट पर 127 रन बना लिए हैं। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में आज हरजिंदर कौर ने कांस्य पदक जीता। उन्होंने महिलाओं की 69 किलोग्राम भार वर्ग के स्नैच में 96 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक अपने नाम किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध नौवहन के लिए भारत के समर्थन की फिर पुष्टि की। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों ने लोकतांत्रिक वैश्विक शासन और शांति तथा जलवायु चुनौतियों पर मजबूत बहुपक्षीय कार्रवाई का आह्वान किया। CBI ने नीट UG 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में मुख्य सरगनाओं में से एक को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आज ही कर मेडिकल कॉलेज में दुष्कर्म और हत्या मामले में 3 IPS अधिकारियों को निलंबित किया। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू चलने की संभावना व्यक्त की। और ताशकंद में भारत ने एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi reaffirms India's support for

No fumes, just entertainment, entertainment or entertainment. और श्रोताओं, इस म्यूजिकल सफर की पायलट कर रही हूँ मैं आपकी वही सीधी सादी पुरानी वाली दोस्त, पुरानी वाली यार, जो कभी आपकी तन्हाइयों में साथी थी, जो गीतों के जरिए आपसे बातें किया करती थी। जी हाँ, थोड़ी सी हूँ फिल्मी, थोड़ी सी हूँ फन लविंग एंड फुल ऑन बॉलीवुड कीरा। जी आपकी वही आरजे, योर रेडियो बारी आरजे कैनी ऑन द माइक, और फिर से वापस आई हूँ वही जज्बात, वही आवाज, वही अंदाज के साथ अपने गीतों का पुराना सा पितारा लेकर और यादों का एक नया सा सफर लेकर। एंड वही अपनी पुरानी वाली कमिटमेंट के साथ आई हूँ कि मैं आपको बिल्कुल भी बोर होने नहीं देंगे, क्योंकि आप सबको तो पता ही है कि एक बार जब मैंने कमिटमेंट कर दी, वेल दोस्तों, मैं खुद की भी नहीं सुनती। तो चलिए श्रोताओं, इसी कमिटमेंट के साथ शुरू करते हैं ये म्यूजिकल उड़ान, और सुनते हैं और खो जाते हैं उन गीतों में जो कभी आपके दिल के कागज पे लिखा गया था।

कभी दिल अपनी बात मान लेता है, ना पूछता है ना रुकता है, बस प्यार बोल देता है। वेल जी हाँ दोस्तों, वो था 2010 की फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई से अभी आप सुन रहे थे आई एम इन लव, जो गाया है KK एंड डोमिनिक सिरेजो ने, म्यूजिक जो है वो दिया है प्रीतम दा ने, एंड इस गीत का बोल लिखा है इरशाद कमील एंड नीलेश मिश्रा, एंड ऑफ कोर्स वन ऑफ माय फेवरेट लिरिसिस्ट अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखा है इस गीत का लिरिक्स जो है वो उन्होंने लिखा है। एंड अगर हम बात करें इस फिल्म के बारे में, तो इस फिल्म में इमरान हाशमी का रोमांटिक साइड फिर से लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था, एंड यू नो सीरियस अंडरवर्ल्ड बैकड्रॉप के बीच उनका काम और उनका सॉफ्ट कैरेक्टर फिल्म को बहुत ही अच्छी तरीके से बैलेंस करता है। एंड इमरान हाशमी के सॉन्ग्स यू नो हमेशा लव स्टोरीज को और भी ब्यूटीफुल और भी मेमोरेबल बना देता है, राइट दोस्तों? और वेल, जब हीरो का प्यार इतना कॉन्फिडेंस हो तो कहानी और गहराई में खो जाता है, राइट? एनीवे जी हाँ, हम बात कर रहे थे वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई। अगर आपने नहीं देखा हुआ है ये फिल्म तो ज़रूर देखेगा, वंस इन अ लाइफ टाइम तो देखना बनता है, तो ज़रूर देखेगा, राइट? तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे एक या दो मैसेजेस आया हुआ है, तो हम जल्दी से पढ़ देते हैं ये मैसेजेस और बढ़ते हैं अगले ट्रैक की तरफ। तो ये लिखा है हमें सपात श्रृंगी रेडियो लिसनर्स ग्रुप ने हमें लिखकर भेजा है, गुड इवनिंग टू FM ट्रैगोपैन फैमिली। वेल सपात श्रृंगी रेडियो लिसनर्स ग्रुप, जान के बहुत अच्छा लगा कि अभी भी आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो ऐसे ही जुड़ी रहिए, कुछ ही मिनटों बाकी है, तो मिल के और भी ढेर सारे अच्छे अच्छे वाले गीत सुनेंगे, ऑलराइट? एंड ये तो काफी महान है, गुड इवनिंग गाना हान दो खुशी पाए से वैसे तो वेल तो का सो फार एक तक गाना बजाई ना से तो अपनी इंजॉय खुशी को ले दो, वेल आई एश्योर यू दूसरा गाना भी बाल बाल है से तो जुड़ी ना थकी भी, ऑलराइट? एंड केविन ओ फ्रॉम कोहिमा भी कोई ऐसे दैट वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई ला फिल्म देता है आई एम इन लव टू तला फेवरेट गाना एक से कुछ है, तो मान खुशी के विनो अजी शाम अपनी ला फेवरेट बजाई दी वो पारी से कुछ मुला भी फेवरेट एक से तो फिल्म दे तो गाना दो, तो मान खुशी मुझन सेम फेवरेट्स शेयर करा दो जानी ना, तो ये तो खुशी नाम बड़ा नेक्स्ट गाना होने वो लिसनर्स, चलिए मिल के सुनते हैं किस्मत कनेक्शन से ये प्यारा सा गीत।

कभी दिल खुद से पूछता है, ये जो एहसास धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्या यही प्यार है या बस कोई आदत सी बन रही है। और फिर वक्त धीरे से जवाब देता है, शायद कुछ रिश्ते पहले से ही लिखते होते हैं। वेल जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे इज दिस लव, जो फिल्म है किस

किस्मत कनेक्शन रिलीज हुआ था 2008 में एंड ये गीत जो है वो गाया है श्रेया घोषाल जी एंड मोहित चौहान ने, म्यूजिक दिया है प्रीतम दा, लिरिक्स जो है वो लिखा है शाहिद क्वाद्री एंड शब्बीर अहमद के लिरिक्स है। एंड यू नो इस गाने के बारे में बात किया जाए तो ये गाना उस कन्फ्यूजन और उस एक्साइटमेंट और यू नो उस हल्का सा मैजिकल फीलिंग्स के बारे में बात करता है, राइट? यू नो जब दिल को समझ नहीं आता है कि अभी जो हो रहा है वो सिर्फ एक पासिंग इमोशंस है या एक सच्चा प्यार है, कभी कभी यू नो दिल में कन्फ्यूजन्स होता है, राइट? एंड ये गीत उसी के बारे में बात करता है। एंड अगर हम बात करें इस फिल्म के बारे में तो इस फिल्म में एक्टर्स थे शाहिद कपूर और विद्या बालन, बहुत ही बढ़िया एक्टर्स ने मिलकर इस फिल्म में काम किया है, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। एंड यू नो इस फिल्म का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो बात करते हैं लक और डेस्टिनी के बारे में, उनके आगे पीछे घूमते रहते हैं ये फिल्म, यू नो कभी कुछ लोग बिना प्लानिंग्स की जिंदगी में आ जाते हैं और धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगते हैं, राइट? उसी के बारे में बात करते हैं इस फिल्म। एंड शायद इसीलिए यू नो कुछ कनेक्शंस इतने स्पेशल्स लगने लगते हैं, राइट? क्योंकि वो सिर्फ चॉइस नहीं है, थोड़ी सी किस्मत भी होता है। एंड दैट्स व्हाट यू लर्न फ्रॉम दिस फिल्म, बोले तो किस्मत कनेक्शन। एनीवे दोस्तों, बचा है हमारे पास सिर्फ 60 मिनट, तो बिना कोई वक्त जाया किए हम सुनते हैं अगला ट्रैक। एंड ये गाना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, एक्चुअली मुझे सभी गाने बहुत ही पसंद है, ऑल माई फेवरेट्स, आई एम शेयरिंग इट विद यू, आफ्टर ऑल ये है आरजेस चॉइस, राइट? तो अगला गाना जो है वो हम बजाने जा रहे हैं आक्रोश की फिल्म से सौदेबाजी।

साहिबान, कदरदान और मेहरबान। इसी के साथ आज के इस खूबसूरत म्यूजिकल सफर का यही देता है हम एक प्यारा सा विराम। वेल यस, ये था आरजे'स चॉइस हिंदी फिल्म सॉन्ग्स आकाशवाणी कोहिमा एफएम ट्रैगोपैन 103 मेगाहर्ट्ज पर। एंड इस शाम का आखिरी हिंदी फिल्म म्यूजिकल शो था वो। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको उतना ही पसंद आया होगा जितना कि मुझे आप सभी के साथ ये गीत शेयर कर। एंड जाने से पहले एक बात ज़रूर बताना चाहूँगी कि हम फिर लौटेंगे कल सुबह 6 बजे विथ योर फर्स्ट ट्रांसमिशन। तो हमारे साथ जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। 103 मेगाहर्ट्ज़ एफएम ट्रैगोपैन जो चलता है आकाशवाणी कोहिमा स्टेशन से, जहाँ पे ढेर सारे गीत होगा, ढेर सारी बातें और ढेर सारी यादें हम फिर मिलकर बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते बस यही कहना चाहूँगी कि हंसते रहिए, जीते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि क्या पता कल हो ना हो। वेल एज ऑलवेज फ्रॉम मी टू यू, दिस हैज बीन योर आरजे कैनी सेइंग ट्रा ला ला।